हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: ही आहे सिंध जी दिल ये मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुंगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी।

दिना शरीफ

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا.
1: نیٹ ورک.

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap,
4: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap,
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News,
6: brought to you by
7: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी।
8: सदर आसिफ अली जरदारी सां मुलाकात, ज़रियनि जो चवणु आहे त मुलाक़ात हिकु कलाक ताईं जारी रही। मोहसिन नक़वी सदर आसिफ अली जरदारी खे आम पैगाम पहुचायो। सदर आसिफ अली जरदारी नवनि सूबनि जे बहस समेत मुख़्तलिफ़ क़ौमी मामलनि ते पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइम रहण जो पैगाम ॾींदे चयो त क़ौमी मुफ़ाद में सभिनी में गॾिजी हलणो पवंदो। पाणी लाइफ लाइन आहे, पाणी खे हथियार तौर इस्तेमाल करण जी इजाज़त न ॾींदासीं। पाणी खे सियासी मक़सदनि लाइ हथियार तौर इस्तेमाल कयो वियो त भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। शंघाई सहकारी कॉन्फ्रेंस जे सरबराह इजलास खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त आलमी मुआहिदनि ते रूह मौजूब अमल थियणु घुर्जे। मका दिफ़ाई मुआहिदो बि करण जे ख़िलाफ़ न आहे। इस्लामाबाद मुफ़ामती यादाश नामो बि ख़िते में अमुन जे बहाली लाइ आम आहे। दहशतगर्दी बि ख़िते खे संगीन ख़तरनि मां हिकु आहे। पाकिस्तान इलाइक़े में चटाधार अमुन जे क़याम लाइ परज़ुम आहे। ॾखिण एशिया मुकमल अमुन खां सवाइ तरक़ी वारो हदफ़ हासिल नथो करे सघे। पीपी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त पाणी खे लखनि माण्हुनि ख़िलाफ़ हथियार तौर इस्तेमाल नथो करे सघिजे। आलमी कानून त पाकिस्तान जे मौक़ुफ़ जी तौसीक़ कई। भारत खे अदालती फ़ैसिले ऐं कानून जे पासदारी करणु घुर्जे। का बि रियासत हिकु तरफ़ो मुआदो नथी ख़तम करे सघे।

वेंदियूं। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त मकानी इदारनि खे वधीक फ़ाल ऐं जवाबदार बणायो वेंदो। छा सिंध में अॻूणे आमिर परवेज़ मुशरफ़ वारो मकानी निज़ाम बहाल थी रहियो आहे? केटीआई न्यूज़ जो सिंध काबिना जे मेंबर्स ऐं MPS खां सुवाल। निसार फोड़े चयो आहे त मुशरफ़ खे नथो सुञाणा। सूबे लाइ सिंध असेंबली को बि निज़ाम जोड़े सघे थी, कंहिं जो बि दॿाउ न आहे। निज़ाम जे बहितरी लाइ केरु चवे थो एतराज़ न हुअण घुर्जे। सूबाई वज़ीर सईद गनी चयो आहे त सिंध में को पुराणो मकानी निज़ाम न ईंदो। मकानी कानून में तरमीम जी ॻाल्हि थी रही आहे, निज़ाम तब्दील न थींदो। सिंध में डिवीज़न या ज़िला वधाइण वारे मामले ते ॻाल्हि ॿोल थी सघे थी। MPA सरदार चांडो चयो त निज़ाम खे नाकाम सरीन घरू वज़ीर जी कुर्सी ते छो वेठो आहे। मोहम्मद बख्शमार चयो त मकानी निज़ाम ते वधीक मुशावरत थींदी, को बि दॿाउ न आहे। राजा रज़ाक चयो त निज़ाम तब्दील न पियो थिए।

प्रेम नगर जे पांधीड़न खां पंध परे नाहे, ॻाल्हि अञा बि आहे। प्रेम नगर जे पांधीड़न खां पंध परे नाहे, ॻाल्हि अञा बि आहे। मस्तनि ते मदहोशीअ जो इल्ज़ाम ॾिनो आहे, ॻाल्हि अञा बि आहे। हंज उॾारे सारे सर में काहिण पिया काहे, ॻाल्हि अञा बि आहे। मोर अठीला माठ रहिया पर ॼाण ॾिनी चाहे ॼाहे, ॻाल्हि अञा बि आहे। अस्सलाम वालेकुम समीन, जी एफ एम 88.8 लाड़काणे जे लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम रोशन सुबुह साण करे अव्हां जो पंहिंजो मेज़बान नेमत अल्लाह जूणे जो अव्हां जी ख़िदमत में हाज़िर ऐं क़बूल पवे सिक भरियो सलाम। जी समय कहिड़ा हलनि जा, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, चाक चङा भला। असांजी हर पल हमेशह अव्हां प्यारनि सजणनि लाइ इहा ई दुआ हूंदी आहे। जिते बि हुजो ख़ुशि हुजो, कॾहिं ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो, ऐं सदाई गुलाब जे गुलनि जीअं खिलंदा मुस्कराईंदा रहो, आमीन। ऐं समय तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त अॼु सेप्टेम्बर महीने जी 2 तारीख़ आहे 2026 ईस्वी सन, ऐं रबियल महीने जी 19 तारीख़ आहे 1448 हिजरी सन, ऐं ख़ैर सां अॼु अरबा जो ॾींहुं आहे।

पंहिंजा शाहदलती भिटाई रहमतुल्लाह अलैह हिकु अहिड़ी मोहसिन हस्ती आहे जंहिंजे करे सिंधी ॿोली ऐं सिंधी सकाफ़त सुञाती वञे थी। संदसि कलाम ई आहे जेको सिंध वासियुनि खे पंहिंजे वजूद जो अहसासु ॾियारे थो ऐं हुननि खे यकीन आहे त जेसी ताईं शाह जो कलाम ज़िंदा आहे त सिंधी क़ौम जो केर वार बि विंगो नथो करे सघे, छो त शाह जे कलाम में समूरियूं उहे ख़ूबियूं मौजूद आहिनि जिन सां हुन मुआशिरे जी इस्लाह करे सघिजे। चङा कन चङायूं मठायूं मुठनि, चङा कन चङायूं मठायूं मुठनि, जो वड़ जुड़े जिन सी सो वड़ सही कनि।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो, उधरदा रहो।
1: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए, आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में। डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: घणे मकदार में पानी पीण सां जिस्म में मौजूद ज़खीरो फ्लूइड निकाल थी वञे थो। पुराणे दौर जा माण्हू तंदुरुस्त रहंदा हुआ, छाकाणि त उहे हिकु शहर खां ॿिए शहर ताईं माना पैदल सफ़र कंदा हुआ। जॾहिं तव्हां तकिड़ो पंधु करियो था त तव्हां पंहिंजे पाण खे हल्को ज़रूर महसूस कंदो ऐं पंहिंजो तकिड़ाई महसूस कंदो। तव्हांजी साह खण जो अमल तकिड़ो ऐं गहरो थींदो आहे ऐं सुठी सिहत लाइ मुख़्तलिफ़ खाधा ज़रूरी आहिनि, पर खाधनि जी चूंड खे हिकु ई बैठक दौरान महदूद करियो ऐं पंहिंजो रोज़ानो मुख़्तलिफ़ को फ्रूट हुजे ऐं खाधनि में तव्हां शेड्यूल ठाहियो त अॼु सब्ज़ी कहिड़ी खाइणी आहे, कहिड़ो खाधो खाइणो आहे, त उन में तव्हां खे बहितर थींदो। रोज़ानो हिकड़ी कंहिं खुराक खाइण सां या हिकड़े कंहिं फ्रूट खाइण सां बि इंसान जी दिल फिकी थी पवंदी आहे। बहरहाल रोज़ानो को नओं फ्रूट न का नई सब्ज़ी ऐं थोरी बुख लॻे थोरी हुजे त तव्हां मानी ख़तमु कंदव त तव्हांजो जिस्म तंदुरुस्त ऐं तवानो रहंदो। हर घड़ी कंहिं आस ते फथकी पई, हर घड़ी कंहिं आस ते फथकी पई, ज़िंदगी ॼण ट्रियास ते फथकी पई। दोस्तनि छॾियो उमल कहे किलो, दोस्ती विश्वास ते फथकी पई। रात जो पोएं पहर जा वरी झुरी, रात जो पोएं पहर जा वरी झुरी, शायरी अहसास ते फथकी पई।

जी असम पूरी दुनिया के इंसान के जिंदा रहने जो दारोमदार निबादात में हासिल शयन ते आहे उहो सब कुछ असां खे ज़मीन मां मिले थो ऐं अॼु ॾींहं ताईं असां ज़मीन मां पए हासिल कयो आहे पर ज़मीन ॾींहों ॾींहुं कमज़ोर थींदी पई वञे ऐं ज़मीन में ख़ुराकी जुज़नि जो तवाज़न घटिजी वियो आहे जंहिं सां पैदावार वधण बदिरां घटिजी रही आहे। असां पैदावार वधाइण लाइ कीमे भाण जो इस्तेमालु करियूं था जंहिंमां वक़्ती फ़ाइदो त थिए थो पर ज़मीन खे हुन जो को बि फ़ाइदो नथो पहुचे छो त उहो भाण ॿूटनि में जज़्ब थियो वञे त साईं जा पुराणे दौर में वथण जो भाण इस्तेमालु थींदो हुयो उहो असां छॾे ॾिनो आहे। वथण भाण तॾहिं थींदो जॾहिं असां माल मताह धारींदासीं ऐं माल मताह धारींदासीं त हुन मां जेको असांजो वथण जो भाण निकिरंदो उहो असां ज़मीन में विझंदासीं त उहो असांजो हमेशह लाइ हुनखे ताक़त हूंदो आहे। कोशिश कयो साईं जा त चवंदा आहिनि त इंसान जी जेका आबादी आहे उहा वधे थी ऐं काफ़ी इंसान वधी चुका आहिनि, आबादी दुनिया जी वधी चुकी आहे पर ज़मीन जो जेको बजरे बि हुन मां टे जरे बि कॾहिं बि न आहिनि थिया। त कोशिशि कयो आबादी जे नवनि तौर तरीक़नि खे इस्तेमालु कयो त जीअं असां उन वधंदड़ आबादीअ खे मोह ॾेई सघूं ऐं नवां सुठा फसल जेके आहिनि असां उहे तयारु करे ऐं उन वधंदड़ आबादी ताईं असां उहो पहुचाए सघूं।

जी हा सिम जा कुझु दोस्तनि जा नाला मां ताईं पहुचाईंदा हलंदासीं। ॻोठ मोरिर निमाशी लॻे वॾनि वारनि खां ज़मीर सेन सोलंगी, मुख़्तर अली, ज़हीर अब्बास सोलंगी, नंढड़ो वफ़ा सेन सोलंगी ऐं ॻोठ अहमद ख़ान लाशारी खां नियाज़ अली लाशारी, नंढड़ो शाहज़ेब लाशारी, ॻोठ हसू जतोइनि खां मोहम्मद मूसा जतोई, यार मोहम्मद ऐं नसर ला जतोई, ॻोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो, मोहसिन अहसन, फहद अहद ऐं शादाब चांडियो, ॻोठ छुटो मक्सी लॻे कंगन खां सिकंदर अली मक्सी, अकबर खान मक्सी, नाराज़ताब सखर लॻे सब्ज़ी मंडी खां एजाज़ अली जूणे जो, मुनीब रहमान ऐं मुजीब रहमान जूणे जो, यारमंद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फौजी इरशाद अली महेसर, एजाज़ अली कलोड़ो, डॉक्टर रिज़वान अली कलोड़ो, माजिद अली जतोई, ॻोठ हरसा जी गढ़ी कोरकाणी खां सूमर फ़क़ीर कोरकाणी ऐं ॻोठ जबल कोरकाणी खां आसिफ अली कोरकाणी ऐं साईं जा ॻोठ लश्करी चांडियो लॻे मही मकोलनि खां हिमत अली चांडियो, ज़ुबेर अली सुल्तान अली चांडियो ऐं ॻोठ पीर बख़्श लिगारी लॻे सिजावल जूणीजो खां ग़ुलाम सरवर लिगारी ऐं मुज़म्मिल हुसैन लिगारी, पीर बख़्श लिगारी, यूसुफ अली ऐं अली बख़्श लिगारी, ॻोठ कंगन खां नादर अली कंगो, गुलाब खान कुंभर, शोएब अली ऐं ग़ुलाम रसूल कुंभर, ॻोठ सच ॾिनो मंगरियो लॻे बकापुर खां हाजी सोरा मंगरियो, फरहान अली ऐं नज़र मोहम्मद मंगरियो।

जी सुमिन प्रोग्राम रोशन सुबुह आमद पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीक 11 वॻे ताईं हिन हलूं पिया पंहिंजो न्यूज़ ब्रेक तरफ़ वरी वापसि ईंदासीं।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरना रहो।
1: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
2: Fakiri Dex Ointment.
3: Tez aaram, muasir hifazat aur qabil aitmad mayar.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
4: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Yulia Granular. Mithi

खिलाफ़ ठहराव मंज़ूर कयूं, जिते सूबा ठाहिण जो ठहराव मंज़ूर थिए उते भले सूबा ठाहियो, पहिरियों उते तरक़ी थिए पोइ असांखे अची चइजो त तव्हां तरक़ी खां रहिजी विया। जंहिंमें सुमरो चयो त पहिरियां कराची खे वफ़ाक जो हिसो बणायो वियो ऐं पाकिस्तान ठाहींदड़ जी एम सैयद खे अवां गदार ठाहे छॾियो। सिंध रुगो हिकु नक्शो न पर धरती तारीख़ी आइनी वधत आहे। एम क्यू एम जे मेंबर इफ़्तिखार आलम चयो त इंतज़ामी यूनिटनि जी बहस खे रुगो सियासी नहरे तौर न पर इंतज़ामी सुधारनि तौर ॾिसणु घुर्जे। पीटीआई जे सजाद सुमरो चयो त ॿ अस्पताल संभाले न सघंदो वफ़ाक कराची खे पंहिंजे हवाले करण जी ॻाल्हि थो करे। इम्तियाज़ शेख चयो त पाणी ऐं ज़मीन सिंध लाइ रेड लाइन आहे, पाणी ऐं ज़मीन जी विच जी ॻाल्हि कई वई त भरपूर मज़ामत कई वेंदी। एम क्यू एम जे त आम चयो त पीपल्स पार्टी पंहिंजे मेयर खे बख़्तियार न पई ॾिए, आइन जे आर्टिकल 140A ते ॻाल्हाइण ग़लति न आहे। डॉक्टर सुराब सरकी चयो त जंहिं तरीक़े सां एम क्यू एम जे मेंबरनि ॻाल्हि कई आहे उन मां लॻे थो त हू सिंध जो विरांगो नथा चाहिनि। पीपी जे एजाज़ सवाती चयो त हिंदुस्तान लॾे वियल हिंदू ऐं ईसाई हिते हुजनि हा त सिंध विरिहाइण जी ॻाल्हि कंदड़ वापारियुनि जी ज़ुबान छिके गॾनि हा। सिंध हुकूमत पारां कमेटी जोड़े छॾी। सीनियर वज़ीर शजीना महमूद नासिर शाह, सईद गनी, ज़ियाउल अंजार, नजमी आलम ऐं सलीम बलोच कमेटी में शामिल। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जो इजलास सूबाई मालियाती अवार्ड कमीशन जी तयारी लाइ अशरफ वास्ते कंसलट मुक़रर। इजलास खे मकानी कानून में तरमीमनि बाबति ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो त मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन जा अख़्तियार ऐं ज़िमेवारियूं वाज़े कयूं वेंदियूं। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त मकानी इदारनि खे वधीक फ़ाल ऐं जवाबदार बणायो वेंदो। छा सिंध में अॻूणे आमिर परवेज मुशरफ वारो मकानी निज़ाम बहाल थी रहियो आहे? केटीएन न्यूज़ जो सिंध काबीना जे मेंबर्स ऐं एमपीएस खां सुवाल। निसार खोड़े चयो आहे त मुशरफ खे नथो सुञाणा। सूबे लाइ सिंध असेंबली को बि निज़ाम जोड़े सघे थी, कंहिं जो बि दॿाउ न आहे। निज़ाम जे बहितरी लाइ केर चवे थो एतराज़ न हुअणु घुर्जे। सूबाई वज़ीर सईद गनी चयो आहे त सिंध में को पुराणो मकानी निज़ाम न ईंदो। मकानी कानून में तरमीम जी ॻाल्हि थी रही आहे, निज़ाम तब्दील न थींदो। सिंध में डिवीज़न या ज़िला वधाइण वारे मामले ते ॻाल्हि ॿोल थी सघे थी। एम पी ए सरदार चांडो चयो त निज़ाम खे नाकाम सरींदड़ घरू वज़ीर जी कुर्सी ते छो वेठो आहे। मोहम्मद बख्श मार चयो त मकानी निज़ाम ते वधीक मुशावरत थींदी, को बि दॿाउ न आहे। राजा रज़ाक चयो त निज़ाम तब्दील न पियो थिए, सुधारा अचणु घुर्जनि। मोहम्मद अली मलकाणी चयो त मुशरफ वारो मकानी निज़ाम न ईंदो। खिते में छिकताण वधण बाद आलमी मार्केट में तेल जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो। तेल जे अघनि में फी बैरल $4 खां वधीक इज़ाफ़ो। बैरेंट तेल $94.65 ऐं डब्ल्यू टी आई $90 फी बैरल थी वियो। हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाधि करे छॾी। पेट्रोल 1.08 रुपया ऐं डीज़ल 51 पैसा फी लीटर महांगो। पेट्रोल जी नई क़ीमत 343.87 रुपया ऐं डीज़ल 370.92 रुपया थी वियो। नोटिफिकेशन जारी 9 सितंबर राति 12 वॻे ताईं लागू हूंदा। बलोचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन। हिंदुस्तानी फितने जा 21 दहशतगर्द मारिजी विया। ख़ारजी दहशतगर्द पारां कस्टम हाउस ते कब्ज़े करण जी बि कोशिश नाकाम। ISPR पारां जारी कयल बयान में चयो आहे सिक्योरिटी फोर्सिस 31 अगस्त ऐं 1 सितंबर जी विच वारी राति ऑपरेशन कया। फोर्सिस कोयटा तुफ़तान क़ौमी शाहरा जन कब्ज़े वारी कोशिश बि नाकाम बणाई वई। फोर्सिस जे जवाबी कार्रवाई दहशतगर्द मारिजी विया। दहशतगर्दनि जी फायरिंग दौरान ॿिनि कस्टम्स आफ़ीसरनि समेत 6 जवान शहीद थिया। वफ़ाक़ी राजधानी इस्लामाबाद खे नई वफ़ाक़ी इंतज़ामी यूनिट बणाइण लाइ मनसूबा बंदी वारी वज़ारत सिफ़ारिशूं तयार करे वरितियूं। इस्लामाबाद जो इंतज़ाम 27 मुख़्तलिफ़ शोबनि ज़रिए हलाइण ऐं सूबाई तर्ज़ ते 27 रुकनी

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: शक्कर जी फिजाइन में समायल मोहब्बत जो एहसास
1: GFM 88
0: शक्कर जो आवाज
2: जी हाँ सभी ने प्रोग्राम रोशन सुबह आमद पे GFM 88 जे नेटवर्क ता अहिमाओं जो मेजबान ने मतलब जुने जो समझा दोस्ती जी सच्चाई दोस्त रुगो उहे न हूंदा जेके खुशी जे महल में गॾु हुजनि सचो यार सचो दोस्त उहो आहे जेको अव्हां जे डुख में बग़ैर सड़जण जे बि सभ खां अॻियां बीठो हुजे दुनिया में रिश्ता त कुदरत ठाहींदी आहे पर दोस्ती हिकु अहिड़ो पाकीज़ा रिश्तो आहे जंहिंखे असां पाण दिल सां चूंडींदा आहियूं अॼु जे हिन मादी दौर में जिते हर शइ क़ीमती थी वई आहे उते हिकु मुख़लिस ऐं सचो दोस्त मिली वञणु कंहिं नेमत खां घटि नाहे यारनि सां गुज़ारियल घड़ियूं ज़िंदगीअ जो सभ खां ख़ूबसूरत असासो हूंदियूं आहिनि जिन जी यादि ई इंसान जे चपनि ते मुरकाणे छॾींदी आहे

पंहिंजे हादसे जी पंहिंजी बीहक थींदी आहे ऐं हुन बीहक जे करे उहा शइ बख़ूबी सुञाती वेंदी आहे। जीअं असीं सामूंडी जहाज़नि जे बीहण वारे हंध खे सामूंडी बंदरगाह सॾियूं पिया ऐं अहिड़ी रीति असां वरी हवाई जहाज़ जे बीहण वारे हंध खे हवाई अॾो या वरी एयरपोर्ट सॾींदा आहियूं या वरी जिते नंढियूं गाॾियूं सफ़र करे अची हिक हंधि बीहंदियूं आहिनि त वरी असां हुन खे बस स्टैंड या बस जो अॾो बि सॾींदा आहियूं। जॾहिं असां दरिया जे इलाइक़े में पहुचूं था त असांखे हुते ॿेड़ियूं ऐं हुन जे बीहण जी जाइ जेको आहे सो जेका हूंदी आहे असां हुन खे सॾींदा आहियूं पतण। ऐं पतण दरिया ते तमामु ज़रूरी हंधु आहे ऐं पतण ऐं ॿेड़ी जी मदद सां दरिया पार करे सघिजे थो ऐं उठ पतण ते तमामु मुश्किल सां ॿेड़ी में चढ़ंदा आहिनि ऐं तॾहिं वरी इहो पहाको बि आहे त उठ ईअं थो कुटजे पतण ते जीअं उठ कुटजे पतण ते माना हुन खे कुटे कुटे ऐं ॿेड़ी में चाढ़ींदा आहिनि तॾहिं इहो पहाको आहे। त साईं मुंहिंजा ॿेड़ी जॾहिं अलाह जे आसिरे निकरंदी आहे तॾहिं हुन जो ॾेख ॾिसण वटां हूंदो आहे त इहे असांजा बीहण वारा जॻहियूं आहिनि जिते असां बस स्टैंड या हवाई अॾो हवाई पंहिंजो सामूंडी बंदरगाह चयो वञे थो इहे बि हिकड़ियूं ख़ासि जॻहियूं आहिनि जेके ॾिसण वटां बीहंदियूं आहिनि ऐं हुन जो यादगिरो बि तमामु ज़रूरी हूंदो आहे।

जी असमिन प्रोग्राम रोशन सुबह जारी ऐं सारी आहे तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीक यारहें वॻे ताईं हिन वक़्तु वरी हलूं पिया कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ वरी वापसि ईंदासीं।

0: It's 10:30 AM. This sound check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज.
3: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज.
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो.

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

GAFM 88 Network, सिंध की आवाज। जी हाँ सभी का प्रोग्राम है रोशन सुबह ऐं रोशन सुबह प्रोग्राम मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां ऐं स्वामी जा हिन वक़्त असां तव्हां ताईं पंहिंजो सेप्टेम्बर महीने हवाले सां अवां ताईं मालूमात पहुचाईंदासीं त ईस्वी साल जो नओं महीनो सेप्टेम्बर आहे ऐं सेप्टेम्बर लातीनी ज़बान जे लफ़्ज़ सेप्टम मां वरितल आहे जंहिंजी माना आहे सतों। पुराणे रोमन कैलेंडर में ही महीनो सतों हुयो पर यूरोपी कैलेंडर में हिन जो नंबर नओ आहे। हिन ई महीने दौरान 21 सेप्टेम्बर ते सिज बिल्कुल ख़तस्तवा ते चमकण लॻंदो आहे ऐं सॼी दुनिया में ॾींहुं राति बराबरि थियनि था। उत्तर अधु गोल में खिज़ां जी मौसम ऐं ॾखिण अधु गोल में बहार जी मौसम थिए थी। हिन महीने में 30 ॾींहं थियनि था ऐं साईं जा पंहिंजो सेप्टेम्बर महीनो कल्ह खां शुरू आहे यानी अॼु 20 सेप्टेम्बर आहे त 1 सेप्टेम्बर 1858 ईस्वी ते सिंध जी दरसगाह सिंध मदरसतुल इस्लाम जो इफ़्तिताह थियो ऐं 1 सेप्टेम्बर 1949 ते अदीब प्रोफेसर डॉक्टर मेमण अब्दुल गफूर सिंधी वलद हाजी रहीम बख्श मेम लाड़काणे शहर में जनम वरितो ऐं 1 सेप्टेम्बर 1958 ते शायर ऐं ब्रॉडकास्टर कौसर बुरड़े जो असल नालो गुलाम कासिम वलद नबी बख्श बुरड़ो गोठ जानी बुरड़ो तालको कोटली जी ज़िलो खैरपुर मीरस में जनम वरितो ऐं 1 सेप्टेम्बर 1957 ईस्वी ते शायर ऐं लेखक कॉमरेड करीम बलोच असुल नालो अब्दुल करीम वलद शाहबंद मुगेरी ॻोठ बारानी मुगेरी लॻे लाड़कण में जनम वरितो ऐं 1 सेप्टेम्बर 1961 ईस्वीअ ते सिंध जो इल्म दोस्त शख़्स खादिम हुसैन चांडियो नवाब शाह में उमीद अली चांडे जे घर में जनम वरितो। त साईं जा इहा असांजी सेप्टेम्बर हवाले सां मालूमात हुई। वरी हिन वक़्तु ख़ूबसूरत नगमो अवां दोस्तनि जे नाम

ਜੀ ਆਸੇ ਮੁੰਜਾ ਕੁਝ ਅਵਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾ ਨਾਲ जिके अमां ते भी पहुचाईंदासीं ऐं तव्हां खे इंतज़ार हूंदो आहे तव्हां खे उहो सीड़ हूंदो आहे नालनि ॿुधण जो आमिर हुसैन भुटो ॻोठ खुदारणो भुटो लॻे माहौटनि खां कुर्बान अली ख़ासि केली झटे मरी खां ऐं ख़ालिक लाशारी झलोरी मीरपुर ख़ासि खां ऐं मीरपुर ख़ासि खां यासमीन मलक हाफिज़ नईम काज़ी अमीनुल्लाह काज़ी सुमराणी इंदड़ ॻोठ लॻे पनवाकिल खां ऐं सीमा कटबर रुखसाना कटबर ज़ुहेब ऐं बिलावल कटबर उन जा पंहिंजो सहेलियूं नदीअ जूं ज़ोया लैला ऐं पिरिया बि प्रोग्राम ॿुधनि पिया लाड़काणे खां उस्ताद ग़ुलाम नबी सुमरो मज़र सुमरो ॻोठु मीराणी चांडिया लाड़काणे खां अली रज़ा लगारी ॻोठु जाम खां लगारी चंबड़ खां ऐं ग़ुलाम अली खोसो यार मोहम्मद खोसो ऐं सदा हुसैन खोसो नूर कॉलोनी लॻे पीटीएस लाड़काणे खां हाफिज़ मुनीर खोसो लाड़काणे खां फ़क़ीर महरम जतोई ॻोठु आगा ख़ान जतोई खां अब्बास महर बि प्रोग्राम ॿुधे पियो ऐं नज़ीर खोसो सोबतपुर बलोचिस्तान खां मोहम्मद ख़ान कुंभार वफ़ा जमाल कुंभार मोहम्मद अली कुंभार हालेपुटा स्टाप मीरपुर ख़ासि खां महरम अली गोराहो माहिनूर मनाहल गोराहो ॻोठु नट गोराहो नौशर फिरोज़ खां रेहान खान बखर खां बरकत जमाली बलोच जाफ़राबाद खां ऐं नूर हुसैन तुनियो बदीन खां दोस्तनि जी वॾी महिरबानी ऐं प्रोग्राम जो आख़िरी नड़े अवां दोस्तनि नाम पिया कयूं।

जी असीं मुंहिंजा नौजवान शायर शेख फराज़ी जो गज़ल अवां ताईं पहुचाईंदा हलूं। मुंहिंजो चैन करार शहर में गुम थी वियो, मुंहिंजो चैन करार शहर में गुम थी वियो, गुलड़नि जहिड़ो प्यार शहर में गुम थी वियो। अहिड़ी रीति वियो हू मूंखां झटि गुज़री, ॼण हो नंढड़ो ॿार शहर में गुम थी वियो। रक्षनि जो दूहो ऐं गोड़ हुयो काफ़ी, सोरठ जो सिंगार शहर में गुम थी वियो। सोचियमि जंहिंसां रोई हल्को बार कयां, सो माण्हू हर वार शहर में गुम थी वियो। तोखे ॻोल्हे ॻोल्हे शेख फराज़ीअ जो, तुंहिंजो ताबेदार शहर में गुम थी वियो। मुंहिंजो चैन करार शहर में गुम थी वियो, गुलनि जहिड़ो प्यार शहर में गुम थी वियो।

जी असमिन जलाल चांडी इन खूबसूरत कलाम ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक्त पहुंचे तो पंहिंजे पुॼाणे ते हयाती बख़ैर अवां सां मुलाकात ज़रूर थींदी तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमत अलाह जुड़ी जो ॾींदा इजाज़त अलाह निगहबान।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 11 AM. This time check is brought to you by
3: Fakiri Analgesic Cream. दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म. आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी.

0: पाकिस्तान ऐं किर्गिस्तान विच में मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार ऐं मुआहिदनि ते सहियूं। बिश्केक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं किर्गिस्तान जे सदर हुसैन वारी तक़रीब में ॿिन्ही मुल्कनि विच में ट्रांज़िट वापार ऐं ॿिन्ही शोबनि बाबति सहियूं कयूं वयूं।
1: अमेरिकी फ़ौज जा हिकु भेरो ॿीहर ईरान ते हमला। सिर्क में शादी तकरीब ते बमबारी। मजमूई तौर 12 ॼणा शहीद, 35 ज़ख़्मी। अहवाज़ जा बारकश्म ऐं बंदर अब्बास में धमाका। जरीफ एयरपोर्ट ते हमिलो। गैस जे अहम मर्कज़ इस्को में बि धमाका। ईरान जे ॿिनि ऑयल टैंकर ते बि हमला। अमेरिकी सदर ट्रम्प चयो आहे त ईरान खे घणा मौका ॾिना। तेहरान जवाबी कार्रवाई कई त हमला वधीक तेज़ कंदासीं।
0: ईरान जा अमरीका ते जवाबी हमला। वॾे अंग में अमरीकी फ़ौजी मारण जी दवा। पासदारनि इनकलाब दावा कई आहे त उर्दन। मिज़ाइलनि खे हवा में ई तबाह कयो वियो आहे। टे मिज़ाइल आबादीअ खां परे वञी किरिया। जॾहिं त अमरीका इख़्तियारनि जो चवण आहे त ईरानी हमलनि में को बि जानी नुक़सान न आहे थियो। कुवैत ऐं बहरीन जी बि ईरान ख़िलाफ़ नाकाम हमलनि खे नाकाम बणाइण जी दावा।
1: वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी लंडन में सदर आसिफ अली ज़रदारीअ सां मुलाक़ात। ज़रीन जो चवण आहे त मुलाक़ात हिकु कलाक ताईं जारी रही। मोहसिन नक़वी सदर आसिफ ज़रदारीअ खे अहम पैगाम पहुचायो। सदर आसिफ ज़रदारी नवनि सूबनि जे बहस समेत मुख़्तलिफ़ क़ौमी मामलनि ते पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइम रहण जो पैगाम ॾींदे चयो त क़ौमी मुफ़ाद ख़ातिर समूरनि धुरियुनि खे गॾिजी हलणो पवंदो।
0: पाणी लाइफ लाइन आहे। पाणीअ खे हथियार तौर इस्तेमाल करण जी इजाज़त न ॾींदासीं। पाणीअ खे सियासी मक़सदनि लाइ हथियार तौर इस्तेमाल कयो वियो त भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। शिंघाई सहकारी कॉन्फ्रेंस जे सरबराह इजलास खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त आलमी मुआहिदनि ते रूह मूजिब अमल थियणु घुर्जे। मका दिफ़ाई मुआहिदो बि कंहिं जे ख़िलाफ़ न आहे। इस्लामाबाद मफ़ामद यादाश नामो बि खिते में अमुन बहाली लाइ आम आहे। दहशतगर्दी बि खिते खे संगीन ख़तरनि मां हिकु आहे। पाकिस्तान इलाइक़े में जटादार अमन जे क़याम लाइ परअज़म आहे। ॾखण एशिया मुकमल अमन खां सवाइ तरक़ी वारो हदफ़ हासिल नथो करे सघे।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

करते हैं, लोगों के दिलों को चाहत से पता करते हैं, लोगों के दिलों को हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर शेयरिंग इंटरव्यू वीडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारे से चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आज ही रुखसार सिंध की आवाज। हेलो, कैसे हैं आप? आई होप कि जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल टिप टॉप से कूल, एक साउंड एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार हैं। पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है, जबकि आप सुनते हैं हमें मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 to 1 पीएम आपका मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरती बड़ा खूबसूरत जगह जारी है, सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं, 11:23 पाकिस्तान के मियादी वक्त है, तमाम तो लोगों की घड़ियों में बज रहा है और इसके अलावा लोग आज सालगिरह है उनको कहेंगे मैंने मनी हैप्पी बर्थडे टू यू। इसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून, और वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी बेस्ट विशेज कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी आवाज जिस दिन गलियों और शबारों, शहरों और शराहों, गाड़ियों और पहाड़ों, दरियाओं और मोड़ गुजारों, घरों और बाजारों, छोटी बड़ी कारों, मेरे पुरस्कारों, या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बिकुम, अहलन वसहलन, मरहबा, बख़ैर आमद में जी आया नू सब बिस्मिल्लाह बाजार शाम नि वेलकम इनटू जिंदगी गुजार है। तो प्रोग्राम में सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और इसी गाने के साथ हम आपको बताएंगे कि प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: इट्स 11:30 AM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: जी FM 91.6।

तफरी से रिश्ता जुड़ो, सुनते रहो GFM 88.8 मोरो की आवाज। छा अवां अच्छन वारन का परेशान आयो, पेश आहे आर्च क्रीम हेयर कलर। पहंजे पसंदीदा रंग सा पहंजो अंदाज बनायो वधिक दिलकश ऐ वधिक स्टाइलिश। पार्टी हुजे, ऑफिस हुजे या के खास मौके जी तैयारी, हर लम्हे पहंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो। आर्च क्रीम हेयर कलर सा पहंजी शख्सियत में आयो नओ रंग, नओ अंदाज ऐ नई ताजगी। अजु ही पहंजे वेझे स्टोर ता आर्च क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐ पहंजे खूबसूरती के दियो नओ रंग। आर्च क्रीम हेयर कलर, हर रंग में खूबसूरती, हर अंदाज में एतमाद। जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
6: Brought to you by
7: Sona Urea Granular Mitti jo
8: Dubai फौजिस्तान जे आवाज़ ऐं आगाह जारी शहरन ते हमला कया विया। सत शहरी शहीद थिया। अमरकी सिर्क जे हिकु ॻोठ खे बि निशानो बणायो। शादी तकरीब ते हमले जे नतीजे में 5 ॼणा शहीद ऐं 68 खां वधीक ज़ख़्मी थिया। अमरकी सेनेट खां मूजिबि ईरान ते हमला दिफ़ाई नौत जा हुया। पासदार इंकलाब जे दिफ़ाई थाकनि खे कामयाबी सां निशानो बणायो वियो।
9: हमलनि जे जवाब में ईरान जो अरब मुल्कनि में मौजूद अमरीकी अॾनि ते वार। कुवैत, बहरीन, उर्दन, इराक में मौजूद अमरीकी अॾनि ते हमिलो। अमरीकी हेलीकॉप्टर ऐं ड्रोन्स तबाह करण जी दवा। पासदारनि इनकलाब चयो आहे त उर्दन जे कैम्प ते नेतनि ते हमले में केतिरा ई अमरीकी फौजी मारिजी विया आहिनि। उर्दन में अमरीकी बेस ते बि हमले में अमरीकी ड्रोन्स खे तबाह कयो वियो आहे। बहरीन में बि अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो आहे। उर्दन बाबति अमरीका जे फायर कयल 15 ब्लास्टिक मिसाइल मां 10 तबाह करण जी दावा।
8: वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी लंडन में सदर आसिफ अली ज़रदारी सां मुलाक़ात। ज़रियुनि जो चवण आहे त मोहसिन नक़वी सदर आसिफ अली ज़रदारी खे अहम पैगाम पहुचायो। सदर आसिफ अली ज़रदारी नवनि सूबनि जे बहस समेत मुख़्तलिफ़ क़ौमी मामलनि ते पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइम रहण जो पैगाम ॾींदे चयो त क़ौमी मुफ़ाद ख़ातिर समूरनि धुरन के गर्जी हलणो पवंदो।
9: मीर रज़ा केस बाबति अदालती कमीशन पुलिस आफिसरनि, टैक्सी ड्राइवरनि, बिज़नेस पार्टनर्स ऐं मक़तूल जे दोस्तनि खे तलब करे वरितो। जुडिशल कमीशन फिरोज़ाबाद जे एसएसओ खे नोटिस जारी करे छॾियो। कमीशन मक़तूल जे घर वारनि, नर्सरी मुलाज़मनि ऐं शुरूआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंदड़ डॉक्टरनि समेत ॿियनि जा बयान रिकॉर्ड करे चुकी आहे।
8: इस्लामाबाद ऐं रावलपिंडी में ॿिए ॾींहं बि तूफ़ानी बरसाति रोड रस्ता ॿुॾी विया। इंतिज़ामिया अलर्ट जारी करे छॾियो। शहरनि खे घरनि में रहण जी हिदायत।
9: मेरापुर में यूसी जीअंदो राजपुर जे चेयरमैन जे घर ते हमले ख़िलाफ़ एहतजाज। ॻोठ टंडरो मीर अली अकबर में यूसी चेयरमैन मीर ममन टालपुर जे घर ते फायरिंग ख़िलाफ़ एहतजाजी धरणो हयो वियो। यूसी चेयरमैन मीर ममन टालपुर जो चवण आहे त राति देर सां ॾहनि खां वधीक हथियारबंदनि हमिलो करे फायरिंग कई। हथियारबंदनि दौरान दरवाज़ा टोड़े क़तल करण जी कोशिश कई वई, पर पुलिस निंड सुतल रही नोटिस वठी जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे।
8: ऐं जेकमाबाद में बदमनी चोर चढ़ियल एएसआई जे घर मां 28 लख रूपियनि जी चोरी। ॻोठ अहमद मियां सुमरो मां चोर एएसआई मुनीर ओढो ऐं बाबू जमील जे घरां चोरी करे विया। चोर अलमाड़ीअ जा ताला टोड़े कर्ज़ जा वरितल 28 लख रूपिया रोक रक़म ऐं 10 तोला सोना ज़ेवर खणी विया।
5: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
10: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
11: अपना शहर, अपना घर, मटियारी और मटियारी की आवाज
12: GAFM 91.6।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे नकी।

0: पुल में कमी रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ पोल्ट्री प्रोडक्शन का शोभा है, लाइव स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज, वो जो है ना बुरी तरह मुतासर हुए हैं इन्होंने मौसमियाती तब्दीलियाँ और माहौलियाती असरात की वजह से।
1: अच्छा, आपके ख्याल में इस वक्त जो मुल्क के अंदर मौजूदा मौसमियाती सूरत हाल है, तो मौसमियाती असरात को रोकने के लिए आपके ख्याल से कौन से ऐसे इकदाम उठाने चाहिए जिनकी जरूरत है?
0: जी, गुजारिश है कि खुदा करे कि मेरे अर्ज पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए जवाल न हो। तो जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं उनके जो असरात मुल्क के अंदर देखने में आए हैं, उनमें एक तो जंगलात और दरख्तों की कटाई से ग्रीन कवर में बड़े पैमाने पे कमी हुई है। ग्रीन कवर कम होने की वजह से बारिशों का जो सिलसिला है वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से खुशकसाली, कहीं बारिशों का ना होना, कहीं बारिशों का ज्यादा होना, लैंड स्लाइडिंग और दीगर बात के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली रोकने के लिए हकीकी तौर पर इकदाम उठाने के साथ शजरकारी, जंगलात की बहाली, ग्रीन बैलेंस, अर्बन फॉरेस्ट का क्याम नागजीर है। ग्रीन कवर में इजाफे से मौसमियाती तब्दीलियों की रोकथाम मुमकिन है।
1: ओके जी, साथ साथ आप हमें ये भी बताइए, अगर आपसे पूछा जाए ग्रीन सिंह फाउंडेशन शजरकारी के मजीद फोर्स के लिए कौन से
0: ग्रीन सिंह फाउंडेशन के सागरी सी इदारों में जाके वहाँ पे हम कंपटीशन करा रहे हैं बच्चों में शजरकारी का शौक उजागर करने के लिए, पेंटिंग के ड्राइंग के मुकाबले, ताकि उनमें दिलचस्पी पैदा हो और उनमें हम सर्टिफिकेट शेड्यूल्स के साथ शजरकारी में दिलचस्प प्रोग्राम शजरकारी करना भी है और अवामनारी के फरोग का हकीकी माना पे पैगाम पहुंचा कर तलबा के साथ ग्रीन अपने मुल्क वतन अजीज को सरसब्ज बनाना।
1: अच्छा, अगर आप हमें बताएं कि शजरकारी मुहिम के असरात जो असरात हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं?
0: जी, मुहिम सिंह फाउंडेशन काम कर रहे थे, काम कर रहे हैं शजरकारी के मैदान में, तो अलौर है कि हमने जो कैंपेन चलाई थी उसके असरात हर बंदा शजरकारी की पोस्ट लगा भी रहा है, शजरकारी कर भी रहा है और जो सरकारी तकारीब हैं उनमें शजरकारी को हिस्सा बनाया जा रहा है और उनमें बड़े पैमाने पे शजरकारी कर रहे हैं। अलहमदिल्ला हमने जो पौधे लगाए थे मुझे खुशी हो रही है कि वो पौधे फलदार हो गए हैं, सायादार हो गए हैं, वो फ्रूट भी दे रहे हैं, फल भी दे रहे हैं, साया भी दे रहे हैं। ये मुझे खुशी हो रही है कि हमने जो एक अमल खैर का काम शुरू किया है शजरकारी का, वो अलहमदिल्ला हमने जो पौधे लगाए हैं उनकी केयर की है और वो ग्रोथ करके बड़े हो रहे हैं, सायादार हो रहे हैं, फल दे रहे हैं।
1: अच्छा, लास्ट में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे तमाम जितने भी हमारे नौजवान हैं शजरकारी को लेकर, उनके लिए कोई खास पैगाम?
0: गुजारिश है कि मौसमियाती तब्दीलियां, माहौलियाती जो असरात हैं वो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। इंटरनेशनल लेवल पे जो माहौलियाती तब्दीलियां हैं उन्होंने पाकिस्तान को आगाह कर दिया है कि मौसमियाती तब्दीलियों की रोकथाम के लिए इकदाम उठाने की जरूरत है, हकीकी तौर पे जो मंसूबेदार हैं वो बनाने की जरूरत है। इसलिए हमारे जो नौजवान हैं वतन अजीज पाकिस्तान का सरमाया है, आइंदा का मुस्तकबिल है, इन्हें शजरकारी करनी है, वतन अजीज पाकिस्तान को हरा भरा करना है, सरसब्ज बनाना है, खूबसूरत बनाना है और हर इलाके में, हर महल में शजरकारी का पैगाम लेकर जाना है और हकीकी

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

जी जो वेलकम बैक वंस अगेन, आप सुन रहे हैं जिंदगी के साथ में, मुझे कहते हैं आशी रुखसार, आपको मेरे साथ पूरे एक बजे तक का है। और इसके अलावा वापस आ चुके हैं जी एक अदर ब्रेक के बाद, एंड दिस इज द आर्ट ऑफ स्लो, लेट्स हैव सम फन, ड्यूरेबल सॉन्ग फ्रॉम द एल्बम सुबह आए ना। साथ कमेंट्स को एंटरटेन करेंगे, रेहाना खान भक्कर से हमें सुन रही हैं जी। इसके अलावा जी मोहम्मद हफीजुर रहमान भक्कर से हमें सुन रहे हैं, सारे भक्कर वाले आज हमें सुन रहे हैं, क्या बात है। अच्छा, इसके अलावा जी मैसेजेस की तरफ भी मूव करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के मुझे रिसीव हो चुके हैं। और हमें मैसेज कर दिया है जी मिठड़ी रुखसार, आप कैसी हो, सफदर बलोच मोरू से, आपका शो बहुत अच्छा है और आपकी आवाज माशाल्लाह बहुत प्यारी है, मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको आबाद रखे। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, योर शो इज नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गढ़ी बलोच फ्रॉम कराची, थैंक यू सो मच, वेरी वार्म वेलकम टू यू शो। क्या हो गया, मुझे लगता है चाय पी के चाय का असर ज्यादा ही हो गया है, लेकिन खैर हम आगे चलेंगे। एंड हमें मैसेज कर दिया है जी मोरो खां गुलाम सरवर बगाई, मैडम सलाम तव्हांखे, तव्हांजी पूरी टीम प्लीज प्ले मैडम नूर जहां डेडिकेशन है बुरो खान या बुरो खान, ओके बुरो खान लाखो आजिज अमानुल्लाह विसरो। ओके, सफदर बलोच ने शेर फेंका है, कहते हैं वफा है वफादार रहेंगे, अपनी जबान से ना कभी कुछ कहेंगे, अगर मिल जाए मोहब्बत हमें मोहब्बत से गालिब, बस देखते रहेंगे। अच्छा नेक्स्ट कॉलर लेते हैं जी, हेलो हेलो, ओ गई जी ना सही, 01340800000134388, वो लोग जो कि स्लो कैच करते हैं तुम लोगों के लिए।

0: दिया
1: पीछे पीछे क्या खूबसूरत लिरिक्स लिख दी है जी, रिलेटेबल लिरिक्स बाय आदिफ असलम. मैं गाना सोच रही हूँ कौन सा प्ले करूँ.

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो, उधर दारा।

जी फाइनल हम आपसे लेंगे इजाजत और जी इंशाल्लाह मेरी आपसे चुटचाट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो द सेम आवर जिस मत भूलिएगा. जिंदगी गुजार है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सो दिस इज मी आरजी रुखसार साइंस.

सर निंड सुतल रही, नोटिस वी जवाबदारन खिलाफ कार्रवाई कई वे। घोटकी में नौजवान के गुमशुदगी।

0: अकोला की बिरादरी के मानन जो एहतजाज नौजवान फिदा हुसैन कुशदगी खिलाफ एक्सेक्शन थाने का प्रेस क्लब तई एहतजाजी रैली कढ़ी वही। मुजाहरीन तो पुलिस नौजवान फिदा हुसैन कोलाची के गिरफ्तार कर गुम कर फौरी तौर से जाहिर कई वे। अकरी चौदगी में रक्षा ड्राइवर का फुर खिलाफ ड्राइवर शहर धरणो मोहम्मद हसन आरिफ हुसैन शरख का फुर खिलाफ मुजाहरों कर धरणो आयो। संदन चवण है करूंडी रतड़ पुल वटा हथियार बंधन रक्षा ड्राइवर का रकम मोबाइल फोन फुर कर वाया फुर थियल रकम ए फोन्स वापस कराई वे। मंशा के विपा एहतजाज अडा बंद करने जो मुतालबो शहर सियासी समन फूलबाग का प्रेस क्लब तई एहतजाजी रैली कढ़ी वही। शहर जो चवण है मंशा के विकरे सबब नौजवान नस्ल तबाह थी किनारी के कंधे ते पहुंची वो है। मंशात फरोशन खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कई वे। में बदमनी चोट चढ़ियल एस आई के घर में 28 लख रुपये की चोरी गोठ अहमद मियां सुमर में चोर में चोरी कर 28
1: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: पाकिस्तान की NPA हर दाने में तीखी सेवा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खत्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

माजूदों के हम दोनों की शैली बातें करने वाले हैं और इसे रेडी शेडी हो जाएगी के लिए और हमारा साथ देने के लिए, क्योंकि आपके साथ के बिना तो कुछ भी नहीं होते ना। तो गांव में रौनकें होती है वो आप लोगों की वजह से ही होती है। तो जल्दी से हम बनते जाएंगे और आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन कहाँ कहाँ से हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम पियों को हमारा इंतजार कर रहे थे। ऐसे बहुत सारी अंटियां, अम्मियाएं, खालाएं, बाजियां और तपागी परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सभी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए। आपको कहेंगे वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने और जनाब और जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा, क्योंकि आपके होंठों पर 440 हल्की संभालने का काम करती बरजान ये सिद्रा, तो बिल्कुल आपके होंठों पर एक ऐसे प्रोग्राम के लिए आपको सुनाने वाले हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा कलाम। तो बहुत ही प्यारा सा कलाम यहाँ पर हमारी लिस्ट में मौजूद है जो कि हम आप लोगों के साथ सुने। कलाम सुनते हैं और कलाम के बाद हम जैसे ही फौरन बंद होने वाले हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है आप लोगों के लिए। तो बस आपने क्या कहना है, आपने हमारा साथ देना है और आप सुनते रहेंगे और हमारा साथ देंगे पूरे पूरे 3 बजे तक। आप सुन रहे हैं चलते गाना मस्ती और जनाब ये ब्यूटीफुल कलाम आप सब लोगों को डेडिकेट।

छपा दीजिए अगर आपको इसका जवाब आ रहा है तो। वैसे अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो कोई मसले की बात नहीं, आप मैसेज तो कर ही सकते हैं। अगर आप हमें मैसेज सेंड करना चाहते हैं लेकिन तरीकेकार आपको नहीं मालूम क्योंकि आप पहली मरतबा सुन रहे हैं या फिर आप घूमने वाले लिसनर हैं, तो भाई जान आप किस तरह से अपने होने का एहसास लाने वाले हैं, ऐसा कीजिए अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना पूरा मैसेज लिखिए, टॉपिक लिखिए और फिर उसे सेंड कीजिए। हाँ जी सही तरीके का बिल्कुल ये होता है क्योंकि कुछ लोगों की ये शिकायत भी मिलती है कि भाई आप हमारे मैसेज नहीं पढ़ते, आपके मैसेज आएंगे तो पढ़ेंगे ना, कि उनको पता नहीं होता कि उन्होंने सबसे पहले LRK लिखनी होती है और 888 पर सेंड करना होता है। ये सही तरीके का हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के। उसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो GLRKANA FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा और जब आप पेज पर आए तो आपको वहां पर लाइव पोस्ट मिल जाएगी जी, हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट अपलोड करने का रीजन ये होता है कि भाई जितने लोगों के हाँ हमारे रेडियो की आवाज नहीं पहुंच पा रही तो वो हमें सुन सके, तो ये आप लोगों के लिए आसानी होगी जनाब। अगर आप हमें सुनना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर चले जाइए और वहां से आप हमें आराम से सुन सकते हैं। हाँ अगर आप हमें सुन ही रहे तो जरा पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो जल्दी जल्दी से हमारी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कीजिए, इससे भी पता चलता है कि कौन कौन लोग हमारे साथ मौजूद है जनाब। और साथ ही साथ आप जरा चाहते को फॉलो करते जा रहे हैं, मैंने चाहते को से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं वो क्या चीज है जो रो रो के मर जाती है। हाय अल्लाह, ऐसी क्या चीज है जो रो रो के मर जाती है। ओके जी, मैं जानना चाहूंगी और देखूंगी कि आप में से कितने सारे लोग हैं जो इस सवाल का जवाब मुझे सही सही बताने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और आप अच्छे से जानते हैं प्रोग्राम में आपका हमारा साथ जो है वो पूरे पूरे जो है ना वो 3 बजे तक का होगा और प्रोग्राम में आप लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने लगाए जाएंगे और आप लोगों के साथ बातें की जाती है जनाब, क्योंकि आप लोगों के जो मैसेजेस आ जाते हैं और आप प्यारी प्यारी बातें करते हैं तो भाई जान आप लोगों के लिए तो अचाना ना दिल में जाए हुआ है बिल्कुल हुआ ही गए। तो आप लोगों की वजह से हमारे प्रोग्राम में रौनकें होती हैं जनाब। और इसके अलावा यहाँ पर अगर मैंने देखा तो टाइम हो जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानब जाएंगे और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानब जाएंगे तो जाहिर सी बात है जल्दी से वापस भी आप लोगों के पास आएंगे। आप अच्छे से जानते हैं आपका हमारा साथ जो है वो 3 बजे तक का होगा और आप तब तक ऐसा कीजिए कि हमें मैसेजेस सेंड कीजिए और टॉपिक को फॉलो कीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आते हैं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग जी 88 नेटवर्क। आप सुन रहे हैं चलती का नाम।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज,

0: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, तीन की ताकत मिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज। ओ पिता जा
3: पिता तो सभी को वेलकम एंड खुशामदीद। आपकी मोहब्बत और समात और शहादत का बेहद वाला शुक्रिया। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मेटो खास मटियारी सकरन मेहरापुर माथली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपके साथ साथ हैं। तो इतने सारे जब लोग हमारे साथ मौजूद हैं इकट्ठा होकर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो जनाब बताइए कहाँ कहाँ से आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं और कितने सारे प्यारे प्यारे लोग हैं जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं। अच्छा, तो जिन लोगों को नहीं पता आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल क्या पूछा गया है, तो सवाल जरा दोबारा रिपीट करते हैं उन लोगों के लिए जिनको नहीं मालूम। तो सवाल आज के प्रोग्राम का कुछ इस तरह है कि आप मुझे बताएं वो कौन सी चीज है जो रो रो कर मर जाती है। हाँ जी बिल्कुल, इसी सवाल का आपने मुझे जवाब बताना है, वो कौन सी चीज है जो रो रो के मर जाती है। अच्छा, तो आप मुझे 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जाएंगे।

जान तो बिल्कुल आपकी मैसेजेस की जाने बाते हैं, बिल्कुल आप लोगों के साथ बातें करते हैं, लेकिन मेरे पास जो आप लोगों को सुनाने के लिए अच्छे अच्छे वाले गाने मौजूद हैं। तो मैं क्या सोच रही थी कि टाइम को वेस्ट किए बगैर आइए जरा आप लोगों को एक प्यारा सा गाना सुनाते हैं। तो ये हमारे प्रोग्राम का पहला गाना होने वाला है और गाना सुनते साथ आप लोगों के मैसेजेस की जाने भी आ जाते हैं। बिल्कुल आप सुन रहे हैं चलते गाना मस्ती, आपका हमारे साथ पूरी 3 बजे तक गाना।

क्या बात है, क्या बात है। गाना सुन रहे हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा गाना एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ आप हमारे साथ मौजूद दीजिए, प्रोग्राम में आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं तो जो आपके मैसेजेस की जाने भी आ जाते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला जो मुझे मैसेज मिला है वो मिला है जी हमारे प्यारे फहीम भाई का। कहते हैं फहीम शेख, सलाम सलाम अदत अदत चाहला खुश आ सफा चाक स्लेट कलम हानी गानो बुधा होली वार पहजा दिल मोहन जी ते कयो तो अलाई जा बिल्कुल लगाते हैं। और आशिक अली मुला हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती। प्लीज हमें कोई इंडियन गाना सुना दीजिएगा, डेडिकेट अली आजम और अकबर और अबरार खान मोहम्मद सन्ना साजन अली लगारी और तारिक बुगियो के नाम। चलें जी, इंडियन गाना तो नहीं सुना सकते, बाकी आप सब भाइयों को वेलकम कहा जाता है। मुफ्ती खास अब्दुल्ला महर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम को, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं प्यारे भाई जान को। और हमारे साथ है फहीम भाई कहते हैं दादा और टॉपिक नहीं पता। अच्छा अच्छा, इरम मुगेरी हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम मेरी दिलबर आपे छाला, प्लीज गाना लगाइएगा। और कहती है स्पेशली डेडिकेट ये आपको है, बस चलें ठीक है, बस मैं ही इंजॉय करूंगी गाना। और साथ खालिद कहते हैं बेटा सिडो अस्सलाम वालेकुम, वो साहब ने टॉपिक का जवाब दिया है, क्या बात है क्या बात है। वैसे ये भी हो सकता है ब्यूटीफुल

जी क्या बात है, क्या बात है, ढोला मतलब। उन्हें चीज हमारी मुंडी पूरी ही बस गए थे।

0: miss you. I always wait for you.
1: ओए क्या बात है. बिल्कुल जी, हमने ओए ओए का सस्ती कॉपी सुन लिया. बहुत ही अच्छा गाना. और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे, तो आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है. साथ ही साथ मेरे यहाँ से आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताएंगे वो क्या चीज है जो रो रो के मर जाती है. हाँ जी, जल्दी से बताइए. और हमारे साथ है इरम, कहती है हाँ बिल्कुल ऐसी वाली बात है. बहुत शुक्रिया एडम, आप हमारे साथ हैं. और हमारे साथ हैं जी ये गुड आफ्टरनून. हाई हाउ आर यू, योर शो इज वेरी नाइस. दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची. ओके जी, आपको खुश आमदीद कहा जाता है. मजर अली तुनियो हमारे साथ हैं. आपने टॉपिक का जवाब दिया जो कि बिल्कुल दुरुस्त है, थैंक यू. और हमारे साथ है मीरो खान चौक से अली अकबर बिरोही भाई, शफन अली मीर बहार और अब्दुल खालिक सियाल आपके साथ मौजूद है. सब भाइयों को वेलकम कहा जाता है, थैंक यू के साथ. Yeah.

हमारे साथ है ये वालेकुम अस्सलाम चंद्र जानी, कैसी हो? वेलकम टू शो, माशाल्लाह प्यारा शो, प्यारी आरजे अलीजा और मैं साथ में आपका शो सुन रही हैं। और कहती हैं कि कुछ लोग दिल में ऐसे उतर जाते हैं फिर चाहे पास ना हो याद हमेशा आते हैं। सौपे का जवाब दिया जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। क्या गाना सुनाया आपने

साइमा मीर मौजूद है। साइमा मीर लिखती है, सलाम अलैकुम माशाल्लाह मक्खन जैसी आरजे, कैसी हो? शो वेरी नाइस, बस सेडी सॉन्ग्स से जरा गुरेज किया करके। ओके, बहुत

पता बोले ना एंगेजमेंट करनी है, घुमा फिरा के बात क्यों करनी है। चलो ये गाने शुरू कीजिए, गाने के बाद हम जाएंगे जरा न्यूज ब्रेक की जाने, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, तो वापस जल्दी आप लोगों के पास आएंगे। आप नहीं कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए। मैं जरा यूनिवर्स से कनेक्टेड, इनकी जी एफ एम 88 नेटवर्क आप सुन रहे हैं।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा।
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
5: पाकण जी दवा पासदारन इनकलाब चयो आए त उर्दन जे कैंप ते नेतन के हमले में केतरा अमरीकी फौजी मारजी वया आइन। उर्दन में अमरीकी बेस ते हमले में अमरीकी ड्रोन्स के भी तबाह कयो वयो आए। बहरीन में भी अमरीकी अड्डन के निशानो बणायो वयो आए। उर्दन पारां ईरान जे फायर कयल 13 ब्लास्टिक मिसाइल मां अड्डन के तबाह करण जी दवा।
6: खिते में अमून इस्तेकाम जो वाहिद रस्तो गाली हुई आहिन। पाकिस्तान अमेरिका ईरान में छिकताण जे खात्मे लाइ कोशिशूं जारी रखंदो। परडे तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी चयो आहे त पाकिस्तान अमेरिका ईरान में छिकताण वधण बावजूद तकरार गाल्हियुनि ज़रिए निबेरण लाइ पुरउमीद आहे।
5: वफाकी सुन नकवी जी लंडन में सदर आसिफ अली ज़रदारीअ सां मुलाकात। ज़रियनि जो चवण आहे त मोहसिन नकवी सदर आसिफ अली ज़रदारीअ खे अहम पैगाम पहुचायो। सदर आसिफ अली ज़रदारी नवनि सूबनि जे बस समेत मुख़्तलिफ़ क़ौमी मामलनि ते पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइम रहण जो पैगाम ॾींदे चयो त क़ौमी मफ़ाद ख़ातिर समूरनि धुरनि खे गॾिजी हलणो पवंदो।
6: जॾहिं सूबाई असेंबलियूं ऐं पार्लियामेंट चाहींदी त सूबा ठही वेंदा। लंडन में साफ़िन सां ॻाल्हाईंदे कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ चयो आहे त वज़ीर आज़म केतिरा ई भेरा अपोज़िशन खे ॻाल्हियुनि जी दावत दिनी आहे। आज़ाद कश्मीर में चूंडन बाद हुकूमत ठही चुकी आहे। अवाम जा मसला बि हल थी रहिया आहिनि।
5: मीर रज़ा केस बाबति अदालती कमीशन पुलिस आफिसरनि टैक्सी ड्राइवरनि बिज़नेस पार्टनर्स ऐं मक़तूल जे दोस्तनि खे तलब करे वरितो। जुडिशियल कमीशन फिरोज़ाबाद जे एस एच ओ खे नोटिस जारी करे छॾियो। कमीशन मक़तूल जे घर वारनि नर्सरी मुलाज़मनि ऐं शुरूआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंदड़ डॉक्टरनि समेत ॿियनि जा बयान रिकॉर्ड करे चुकी आहे।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डूंगर खा भी डाढ़ा मियर नहीं का चीज न आ।

भाई को शेयर कर दिया गए। और इसी के साथ साथ बताएं जरा कौन कौन हमारे साथ मौजूद है। भाई आज देखा जाए तो आपके मैसेजेस की तादाद कुछ ज्यादा ही मुझे नजर आ रही है, तो बिल्कुल आपके मैसेजेस की जानब आते हैं और जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं आपके मैसेजेस को, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि कुछ रह जाते हैं। जैसे ये हमारे साथ मौजूद है जी विलेज याम खान साकी से शहजेब एंड शहजेन, अच्छा शाहजहान साकी कहते हैं बाजी शो जबरदस्त है आपकी तरह ब्यूटीफुल है। और अंसिल देते हैं जो कि बिल्कुल दुरुस्त है, कहते हैं बेचारी रो रो के मर जाती है आपको और आपकी पूरी एफएम की टीम को हमारी तरफ से सलाम। बाजी प्लीज प्ले सिंधी सॉन्ग हथ मथे क्यासी डाडो आ बाबा डाडो आवा के, और डेडिकेट कॉमरेड जुल्फकार साकी को दिया है। ओके जी, शहजेब एंड शाहजहान आप दोनों को वेलकम कहा जाता है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। चाचा खालिद कहते हैं कि वो हसरतें हैं जो रो रो के मर जाती हैं, ये टॉप कैंसर बेटा जैसे मेरी हसरतें मर गई। भाई हसरतें तो होती इसलिए कि वो रो रो के मर जाती है, तो बिल्कुल भी इसका जवाब नहीं होगा। सो क्या बात है, चाचू इज ऑलवेज दुखी, मत करिए सब चाचा। और हमारे साथी जी आमिलाबाद से गुलाम शबीर अबड़ो, बाजी सदरा आपकी आवाज और अंदाज मुझे बहुत पसंद है और मैं आपका प्रोग्राम 5 साल से सुनता आ रहा हूँ, मुझे नाहिद अख्तर की आवाज में एक गाना सुनाइएगा। ओके जी, हमारे प्यारे भाई को नाहिद अख्तर की आवाज में एक प्यारा सा गाना सुना देंगे। सो बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया होता है। और जी हमारे साथी विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्राम हिंगोरजा से दिलावर हुसैन सोलंगी भाई कहते हैं बाजी सदरा केसी ये टॉपिक का जवाब बिल्कुल दुरुस्त, बाजी हम आपका शो बड़े शौक से सुनते हैं, आज हमें शमन का गाना सुनाना। ओके जी, ओके बिल्कुल सुनाते हैं। और कहते हैं थैंक यू डेडिकेट नजीर सोलंगी, मुदस्सिर सोलंगी, मुबशिर सोलंगी, आसिफ सोलंगी एंड जमादार खुदा बख्श सोलंगी। ओके जी, और ये हमारे साथ हैं जी कहते हैं दादा टॉपिक अच्छा ठीक है, मुझे आज आपके मैसेजेस थोड़े अलग अलग क्यों लग रहे हैं, लग रहा है कि फहम तो है ही नहीं ऐसे क्यों भाई आ रही है, पता नहीं भाई देखेंगे। और इसके अलावा हमारे पास एक गाना मौजूद है, तो हम जरा निगत नाज की आवाज में ये प्यारा सा गाना सुन लेते हैं। आज मुझे पता नहीं क्यों एक सस्ती कॉपी वाले गाने सुनने का शौक चढ़ा हुआ है, तो हम ये वाला गाना भी इंजॉय करते हैं जो ये बहुत खूबसूरत होने वाला है। जाहिर सी बात है निगत नाज ने गाया है तो खूबसूरत होगा ही। और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चलते का नाम मस्ती, आंखी सदरा के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है बताए ना, पता चले।

याद आ रहा है, गाना कंज्यू करेंगे, लेकिन साथ साथ यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं जी। ये जवाब दिया है आपने हमें, जो कि पता नहीं क्या ही सोच कर जवाब दिया होगा, ये मौजूद है। हाय किस यहाँ पे, योर शो इज वेरी नाइस, प्लीज प्ले सॉन्ग अखड़ें जा ओ जागा। ओके दिस इज अल्ताफ अली गाती बलोच फ्रॉम कराची। ओके थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ है। और गुल हसन हमारे साथ हैं, आपने लिखा है जात है मेरी नंदवानी। ओके जी नंदवानी, अगर मैं गलत रीड कर रही हूँ तो उसके लिए माजरत करते, क्योंकि आपने ऐसे ही लिखा है। और कहते हैं फ्रॉम एफ जेड ओ स्टाफ से, शो वेरी वेरी नाइस है, प्लीज बाजी दिल वाले फिल्म का सॉन्ग चलाना, ओ जीता था जिसके

क्या बात है। वैसे तो आप जानते हैं कि निगत नाज के बाद जाहिर सी बात है मुमताज मौलाई साहब आते, लेकिन आज ऐसा था कि इस वाले गाने की फरमाइश थी, तो मैंने सोचा कि भाई मुमताज मौलाई को जरा छुटा कराते और हम ये वाला गाना सुनते, क्योंकि फरमाइश सबसे पहले।

गाना एंजॉय कीजिए. गाने के बाद हम जरा जाएंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं. आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए. डर रहे हैं जरा यू साथ लिसनिंग. जी नेटवर्क आम मस्ती.

0: मूर्ति चाहिए तो ब्यूटी वेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे रखी करो ले।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि आप एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। जल्दी के नाम मस्ती आपके सत्रह के साथ मौजूद है। हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में। अगले तो आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मित्र खास मतियारी सखर मेहरा पर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप हमारे साथ।

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना, जो कि आप एंजॉय करें समन बिराली की आवाज में। इस गाने को हम डेडिकेट कर देंगे जी हमारे प्यारे जयपाल भाई जान को। जयपाल भाई हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल जी, आपके मैसेजेस पढ़ते हैं, यहाँ पर मैसेजेस जो है वो काफी जमा हो चुके हैं, तो ये हमारे साथ हैं जी। हाउ आर यू सिद्रा जी? वो जवाब है, बिल्कुल आपका जवाब सही है, जो हमारे लिए जान दे देती है। ओके ओके, अटल मोरी से राजा हमीरचंद है, किशोर कुमार, हीरा लाल, सुरेश और गफार महर, प्लीज प्ले हदीका क्यानी मरवाड़ी। अल्लाह इच्छा अच्छा लिखे तो वगे थे। अच्छा, मरवाड़ी में ही आपने मैसेज लिख दिया है, क्या बात है जी, इतनी ज्यादा नहीं आती। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। आप सब भाइयों को वेलकम कहा जाता है। इस एम कहती है, सलाम मुस्कान जाने कैसी आप, अल्लाह को हमेशा खुश रखे, हर मुश्किल हर बुरे इंसान से बचाए।

जी आगे यहाँ पे लिखा है कि मेरे खास सलाम दीजिएगा आपको आपकी अम्मी और सायमा मीर आपकी दीवानी एस ए ना के साथ है। ओके जी, ये जो आपने मुझे बात बताई ना ये सही है, इसमें बुराई क्या है? कोई हो जाए। और शायद खालत के दिन बेटा सिद्धू सॉन्ग की रिक्वेस्ट जी, पारत था बिल्कुल पारत है पारत। और कहते हैं मेरे SMS रीड किए आपने या नहीं, क्योंकि रेडियो सखर पर शो स्टॉप हो चुका, बाकी फेसबुक पर जाता हूँ तो पैनल पर SMS कैसे करूँ। और इस मसले का सलूशन बताएं प्लीज। वैसे आप को जो ऐप में बताती हूँ ना वो बस आप डाउनलोड करके उस पर आराम से आप मेरा शो सुन सकते हैं, क्योंकि आपका वो बैकग्राउंड ऐप पे चलता रहेगा, आप अदरवाइज सारे काम करते रहेंगे फोन में, आपका रेडियो चलता रहेगा, तो वो आप बस अपने फोन में इंस्टॉल कर लें और उससे आप हमारा प्रोग्राम सुनेंगे तो आपको ज्यादातर जो है ना वो आसानी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐप वर्क करता है बहुत अच्छे से। और गोट हाची गुलाम खास के लिए रख झंडो मरी खां कुर्बान अली खास के लिए असंजो प्रोग्राम बुधी पो। सो थैंक यू सो मच तमाम भी चौदह भली करी आया। और मैडम नूरजहां के गाने की किसी ने फरमाइश कर दी थी, ये गाना उनको डेडिकेट जाता है। और मीरो खान चौक से अली अकबर बिरोही कहते हैं शफन अली मीर बहार और अब्दुल के बाद शायद आपका मैसेज है वो मिसिंग पार्ट हो चुका है, सो आप भाइयों को वेलकम कहा जाता है।

और की आप बहुत ही प्यारा गाना जो कि हम एंजॉय करे थोड़ी देर के साथ बोलते ही ना गाना तो लगाती हूँ बाजी लेकिन वो सुनने नहीं देती है तो चले गाने सुनने भी दे रही हूँ आजकल मैं आपको और जो यहाँ पर मकसूद मिला हमारे साथ मेहरापुर से कहते हैं सदरा मुस्कान चलती का नाम मस्ती प्रोग्राम और सुनाओ क्या हाल है और मुझे अख्तियार दायो का गाना सुनाना अख्तियार दायो का गाना खैर अभी तो नहीं प्ले हो सकता मैं आपको 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुनाऊंगी या फिर कल वाले प्रोग्राम में सुन लेंगे और हमारे साथ सलाम भाऊ वालेकुम असलाम भाऊ और कहते हैं ज्वाइन किया एंड और क्या वेलकम मी ओके ओके ओके वेलकम टू यू प्यारे भाई और क्या कहते हैं इंसान अगर यकीन के काबिल होता तो हर वक्त दो फरिश्ते उसके साथ ना होते जयपाल भाई क्या बात है कितनी कमाल बात आपने बयां कर दी है और कहते भाऊ जी जनाब कोई आज मस्त सा शमन का गाना तो लगा दो आपकी मेहरबानी होगी बिल्कुल जी हमने मिलकर एंजॉय किया बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा सा शमन का गाना और रसूलाबाद से आब्दुल सिंह शम्बानी भाई वालेकुम अस्सलाम और अदी वो है आपने टॉपिक का जवाब दिया जो कि बड़ी ही मुझे लगता है कि दिल से ये जवाब आपने सोचकर मुझे दिया है सो बहुत शुक्रिया आपके मतलब आपके मैसेजेस की बड़ी कदर है थैंक यू सो मच आप हमारे साथ और ये हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम विलेज याम खान साहब की से शाहजेब एंड शाहजहान साहब की ओके दोबारा से आपने मैसेज कर दिया है बहुत शुक्रिया आपका गाना लगाया आई होप आपने एंजॉय करा होगा ओके जी ये नाहिद अख्तर की आवाज में गाना है उस भाई को डेडिकेट जाता है जिसने फरमाइश कर दी थी

जी क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना आप यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास जो वक्त है ना वो भी बड़ा तेजी से गुजरता जा रहा है। और मकसूद मल्हा आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। ये हमारे साथ जयपाल भाई लिखते हैं, हर रात एक नाम याद आता है, कभी सुबह तो कभी शाम याद आता है। सोचता हूँ कि कर लो दूसरी बार मोहब्बत, लेकिन पहली मोहब्बत का अंजाम याद आता है। क्या बात है, बहुत बेहतरीन एम कहते हैं। बहुत शुक्रिया रम, थैंक यू। और जयपाल भाई कहते हैं, भाई सलाम सुहेल दिवेक एंड राहुल भाऊ को। ओके जी, ओके सब भाइयों को सलाम एंड वालेकुम असलाम एंड वेलकम। अच्छा जी खालिद, आपको वेलकम हो गया जी लास्ट लिंक में। अच्छा के अलावा गुल हसन हमारे साथ है, नंदवानी फ्रॉम फिरोज महर लाइके था बाजी, मेरा गाना चलाओ, जीता था जिसके लिए अदा, ये इंडियन गाना असन नथा लायो हलाई दासी, तो मतलब थोड़ो फटा हो जाएगा इन जी करे। तव पाकिस्तानी गानो फरमाइश कयो, सिंधी गानो फरमाइश कयो, जेको तव्हांजी दिलचस्प, बस इंडियन गानन का थोड़ो गुरेज कयो। और हमारे साथ हैं जी, सुन रही नाम खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपने भी टॉपिक का जवाब

गाना बहुत ही खूबसूरत से लगाया है, तो हम साथ साथ गाना एंजॉय करेंगे। और आज जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था वो बिल्कुल ये पूछा था कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सी चीज है जो रो रो के मर जाती है। उसका अभी जवाब देखा जाए तो वो होगा मोमबत्ती, और दूसरा बर्फ है वो भी। हाँ सही कह सकते हैं, तो ये इसका सही जवाब होगा, मोमबत्ती और बर्फ। बाकी जो लोग जिनको नहीं था पता सवाल का जवाब, उनको पता चल गया।

आगे जिन लोगों ने सही जवाब दिया है उनका बहुत ही शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप बहुत होशियार हैं। अच्छा जयपाल भाई कहते हैं भाऊ यहाँ पर न्यू दोस्त किए हैं, क्या करूँ अच्छे हैं ये भी, अच्छी बात है भाई नए फ्रेंड्स बनाने चाहिए। एंजॉय करना चाहिए, सही बात है।

अभी भी इस प्यारे से गाने को डेडिकेट करते हैं जी चाचे को, क्योंकि चाचे ने फरमाइश कर दी थी इस गाने की। डेडिकेट किसको किया? किसी को भी नहीं। चले जी हम इंजॉय कर लेते हैं। ओगरी फहीम शेख भी हमारे साथ माजुद, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। और इसी के साथ साथ जो यहाँ पर आप लोगों से लेते हैं इजाजत, वरी श्रोताओं से मुलाकात मुझे जेका थी भाई हुआ पंच बजे वाले प्रोग्राम में थी सो पांच उन्हें सिरो ख्याल रखना है क्या गलती थी मुझे तो माजुरत कहूँ था जिन्हें फीडबैक रेजी वैन जिन्हें गाना रेजी वैन सबने का माजुरत कहूँ था सो मुकलानी ना ही बाबू सन सलामत साफ सलामत अल्लाह हाफिज बाय लव यू ऑल।

0: अपना शहर
1: और मटियारी की आवाज़
2: FM 91.6।
3: फकीरी नीम पिकली हीट सॉप
4: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी
5: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
6: ब्रॉट टू यू बाय
7: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
8: जडे सूबा असेंबलियों पार्लियामेंट चाहिंदी तो सूबा ठही वेंदा। लंडन में साफिन से गालाइंदे कानून आए तो वजीर आजम केतरा भेरा आए। आजाद कश्मीर में चूंडन बाद हुकूमत ठही चुकी है। अवाम जा मसला भी हल थी रहा है।
9: पाकिस्तान और कर्गिस्तान विच में मुख्तलिफ शोबन में सहकार ए मुआहदन ते सहियूं। बेगचिक में वजीर आजम शहबाज शरीफ ए कर्गिस्तान जो सदर सैन वारी तकरीब में शरीक थे। वापार आई टी समेत दहशतगर्दी खिलाफ सहकार वधाने वारे मुआहदन ते सहियूं कयूं वयूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ चयो आहे त पाक कर्गिस्तान लागापा वजीर वक्त मजबूत थी रहा आहिनि। बे मुल्क दहशतगर्दी इंतहा पसंदी खिलाफ़ गॾिजी कम कंदा। वापार खे वधाइण लाइ बे कानूननि में वधीक नरमी कई वेंदी।

0: अमेरिकी फौज जा एक भेरो बीहर ईरान ते हमला। सिरक में शादी तकरीब ते बमबारी, 12 जणा शहीद, 70 खां वधीक जख्मी। ईरानी सूबे कुर्दिस्तान में हवास ते आगाज जारी शहरन ते हमला कया वया। 7 शहरी शहीद। अमेरिका सिरक जे एक गोठ के भी निशानो बनाए वयो। शादी तकरीब ते हमले जे नतीजे में 5 जणा शहीद, 68 खां वधीक जख्मी थिया। अमेरिकी सेंटकॉम मूजिब ईरान ते हमला दिफाई नौयत जा हुया। पासदारन इनकलाब जे दिफाई थाकन के कामयाबी सां निशानो बनाए वयो।
1: हमलन जे जवाब में ईरान जो अरब मुल्कन में मौजूद अमेरिकी अड्डन ते वार, कुवैत, बहरीन, उर्दन ऐं इराक में मौजूद अमेरिकी अड्डन ते हमलो, अमेरिकी हेलीकॉप्टर ऐं ड्रोन तबाह करण जी दावा। फाज़र इनकलाब चयो आहे त उर्दन जे कैम्प तर्तन ते हमले में केतिरा ई अमेरिकी फौज मारिजी विया आहिनि। उर्दन में अमेरिकी बेस ते हमले में अमेरिकी ड्रोन्स खे तबाह कयो वियो आहे। बहरीन में बि अमेरिकी अड्डन खे निशानो बणायो वियो आहे। उर्दन पारां ईरान जे फायर कयल 13 बैलिस्टिक मिसाइल मां 10 तबाह करण जी दावा।
0: खिते में अमन ऐं इस्तेहकाम जो वाहिद रस्तो ॻाल्हियूं आहिनि। पाकिस्तान अमरीका ऐं ईरान में शिकतान जे ख़ात्मे लाइ कोशिशूं जारी रखंदो। परडेही तर्जुमान ताहिर हुसैन इंद्राबीअ चयो आहे त पाकिस्तान अमरीका ऐं ईरान में शिकतान वधण बाबति तकरार ॻाल्हियुनि ज़रिए निबेरण लाइ पुरउमीद आहे।
1: قومی اسمبلی جی کمیونیکیشن نبڑو کے معطل کرن جو حکم۔ سکھر شکارپور روڈ جو 22 کلومیٹر مرمتی کم ناقص قرار۔ قومی اسمبلی جی کمیونیکیشن کمیٹی جو اجلاس ہے۔ اسکیمن جو جائزو ورک جی ہدایت کے محتاج کے آباد کا تعمیر کر حیدرآباد موٹر وے M10 تے 500 ارب روپئے جو منصوبہ ہے۔
0: वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सां गेट्स फाउंडेशन जे जेंडर बाबति सदर डॉक्टर अनीता ज़ैदीअ जी मुलाक़ात।

0: चर फंड तहत माउ ऐं ॿार जे सिहत गिज़ायत ऐं हिफ़ाज़ती टुकनि ते ॻाल्हियूं कयूं ट्रेंडिंग जो ख़ात्मो हुकूमत जी
1: मलिर जे लासी ॻोठ में मुबैना पुलिस तशद्द में नौजवान इरशाद बलोच जे क़तल ख़िलाफ़ वारसनि जो एहतजाज वारसनि इल्ज़ाम आयो आहे त इरशाद बलोच खे प्राइवेट माण्हुनि ऐं पुलिस घरां कंदे तशद्द करे क़तल कयो. SP अली हस्मेटे ते एतमाद नाहे, जांच कंहिं ॿिए ज़िले जे SSP हवाले कई वञे.
0: गंबट जा 31 प्राइमरी स्कूल ख़तरनाक करार.

0: और कंडो नारे जो ऐं ॿियनि स्कूलनि में उस्ताद मुकर न
1: हाला में जेड़े बाद एक दुर जो स्कूल ते हमलो बजना जख्मी मखदूम गुलाम हैदर हाई स्कूल में डाहरी ऐं फ्रॉस बिरादरी सां ताल्लुक रखंदड़ शागिर्द हो उस्तादन पारा शागिर्दन में ठा कराइण बावजूद लाहिरी धुर जे स्कूल ते कहा लठिन ऐं डंडन जो इस्तेमाल बजना जख्मी वाके खिलाफ़ उस्तादन ऐं शागिर्दन जो एहतजाज
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
5: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

अभी बुधोपिया प्रभात मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़ सिंध जो आवाज़ बुधंदा रहो।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
0: आप सुन रहे थे GAFM।
3: शादी तकरीब ते हमले के नतीजे में 5 जना शहीद 88 का वधिक जख्मी थिया। अमेरिकी सेंटकॉम मूजिब ईरान ते हमला दिफाई नोयत जा होया। पासदारन इनकलाब के दिफाई थाकन के कामयाबी सा निशानो बनाए वयो।
4: हमलन के जवाब में ईरान जो अरब मुल्कन में मौजूद अमेरिकी अड्डन ते वार, कुवैत, बहरीन, उर्दन ए इराक में मौजूद अमेरिकी अड्डन ते हमलो, अमेरिकी हेलीकॉप्टर एंड ड्रोन्स तबाह करण जी दावा। पाजर इनकलाब चयो आहे तो उर्दन के कैंप ततन ते हमले में केतरा ही अमेरिकी फौजी मारजी विया आहिनि। उर्दन में अमेरिकी बेस ते हमले में अमेरिकी ड्रोन्स के तबाह कयो वियो आहे। बहरीन में भी अमेरिकी अड्डन के निशानो बणायो वियो आहे। उर्दन पारां ईरान जे फायर कयल 13 बैलिस्टिक मिसाइल्स मां 10 तबाह करण जी दावा।
3: खिते में अमन इस्तेहकाम जो वाहिद रस्तो गालियूं ही आहिनि। पाकिस्तान, अमरीका, ईरान में शिकतान जे खात्मे जूं कोशिशूं जारी रखंदो। परडेही तर्जमान ताहिर हुसैन इंद्राबीअ चयो आहे त पाकिस्तान, अमरीका, ईरान में शिकतान वधण बावजूद तकरार ॻाल्हियुनि ज़रिए निबेरण लाइ पुरउमीद आहे।
4: कौमी असेंबली जी कम्युनिकेशन कमेटी जो NHA सखर जी जे एम सुल्तान अबड़ो के मुअत्तल करण जो हुकुम। सखर शिकारपुर रोड जो 22 किलोमीटर मरम्मती कम नाकिस करार। कौमी असेंबली जी कम्युनिकेशन कमेटी जो इजलास एजाज जखराणी की सदारत हेठ थियो। मुख़्तलिफ़ स्कीम जो जायजो वरतो वियो। कमेटी जे हिदायत ते NHA चेयरमैन सुल्तान अबड़ो के मुअत्तल कयो। NHA चेयरमैन इजलास के आगाही डींदे चयो त हैदराबाद खां कराची ताईं हिक धार मोटरवे M10 तामीर कयो वेंदो। सखर हैदराबाद मोटरवे जो भी कम अक्टूबर में शुरू थींदो। M10 ते 5 स्पैन जो मनसूबो आहे।
3: वडे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सां गेट्स फाउंडेशन जे जेंडर बाबति सदर डॉक्टर अनीता ज़ैदीअ जी मुलाक़ात। रैंक फ्यूचर फंड तहत माहियत, गिज़ायत ऐं हिफ़ाज़ालियूं कयूं वयूं। मुराद अली शाह चयो त ॿारनि में गिज़ाई खोट ऐं तरजीह आहे।

0: थे तो सोरह स्कूलन में उस्ताद मुकर्रर नायन थे जैसे सबब शागिर्दन जो मुस्तकबिल दाव ते लगल आए। खतरनाक करार डिनल स्कूलन में प्राइमरी स्कूल मुरीद खान मरी अला बख्श खोड़ो बिलाड़ो ए बिया स्कूल जडे प्राइमरी स्कूल हबीबुला हुजन कंवर पवर कंडू नारे जो बेन स्कूलन में उस्ताद मुकर्रर न थी सकिया।
1: हाला में झेड़े बाद एक धुर जो स्कूल ते हमलो बजना जख्मी मखदूम गुलाम हैदर हाई स्कूल में डाहरी बिरादरी से ताल्लुक रखंदड़ शागिर्दन में झेड़ो थे उस्तादन पारा शागिर्द बावजूद धुर के स्कूल ते कहा लठिन डंडन जो इस्तेमाल भी खिलाफ उस्तादन शागिर्दन जो एहतजाज।
0: हैदराबाद में नवाब शाह जे रहवासियुनि जो जमीन ते मुबैना कब्जे ए तशद्दुद खिलाफ एहतजाज तहफ़ुज़ ऐं इंसाफ़ जे मुताबिक़ बासर माण्हुनि जे मुबैना ज़ुल्मनि ज़मीन ते कब्ज़े ऐं तशद्दुद ख़िलाफ़ हैदराबाद में एहतजाज कयो। ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे तहफ़ुज़ फ़राहम करण जो मुतालबो।
1: बारे में सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ अवामी तहरीक जी रैली औरतनि ऐं ॿारनि जी बि शिरकत अॻवाणनि चयो आहे त सिंध ख़िलाफ़ कंहिं बि साज़िश खे क़बूल न कयो वेंदो।
0: तलार में लाड़ कैंपस के यूनिवर्सिटी जो दर्जो न मिलण ए सिविल अस्पताल तलार की इमारत तमीर न थियण खिलाफ एसटीपी जो एहतजाज। एसटीपी अगवाणा ने कारकुनन पारा चारनी स्टाफ ते अलामती भुखड़ताल भी कई। अगवाणा चे तो लाड़ कैंपस के यूनिवर्सिटी जो दर्जो डेई तलार की अस्पताल तमीर कराई वे।
1: मीरपुर खास में सिंधड़ी तालके के स्कूल में उस्तादन की खोड़ खिलाफ शागिर्दन ए वालदन जो एहतजाज। मुजाहरे में टाउन चेयरमैन की भी शिरकत। मुजाहरीन है तो प्राइमरी स्कूल में उस्तादन की सख्त खोट है। बारन की पढ़ाई मुतासिर थी रही है। उस्ताद मुकर्रर करे शागिर्दन जो मुस्तकबिल बचाओ वे। नौशेरो फिरोज में भी मदरसा हाई स्कूल के शागिर्दन जो सहूलतन की खोड़ खिलाफ वालदन से गड एहतजाज। स्कूल में भी सहूलतू दियण जो मुतालबो।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे. तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले.
4: अपना शहर, अपना घर, मटियारी. और मटियारी की आवाज
5: GFM 91.6.

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
3: जी एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: मुदलदा रहो।
1: Viral Music 786.

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अभी बुध मटियारी 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हक संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6
1: कलंदर लाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जी FM

0: जो आवाज उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: गुलाब
4: अब आप सुनेंगे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: ब्रॉट टू यू बाय
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वन
7: सुबह वजीर मोहम्मद बख्श मेहर जो चवण है ता पाकिस्तान जो बुनियाद सिंध ए सिंध जो बुनियाद पाकिस्तान है बिन्हीं के एक बे का धार न तो कर सकते। साजिद जोखियो चयो ता पाकिस्तान लाए सिंध जे अवाम जो कुर्बानी विसारे न थी सकजन। सिंध के इंतजामी यूनिटन में विरायण की गाल कंदड़ पहरियां वाजे कन ते केड़ो इंतजामी यूनिट ठाण चाहन था। मारे राष्ट्रीय चयो ता सिंध असाजी धरती ए माउ जी है, माउ के टुकड़ा नाहे कयो वेंदो। सिंध ए कराची जड़न लफ्जन ते तकलीफ थे थी त सिंध टोड़न की साजिश की बर्दाश्त कर सकजे थी। एमपीए हीर सोहू पारा सिंध खिलाफ गालाइंदड़न के गद्दार करार देने जो मुतालबो।

वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी जी लंदन में सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात जदन जो चवण आए तो मोहसिन नकवी सदर आसिफ अली ज़रदारी के अहम पैगाम पहुंचाया। सदर आसिफ ज़रदारी नव मनसूबन की बहस समेत मुख्तलिफ कौमी मामलों से पैंजे मौकिफ से कायम रहने जो पैगाम दींदे कौमी मफाद खातिर समूरी दुनिया के गड़ी हलणो पवंदो।

जॾहिं सूबाई असेंबलियूं ऐं पार्लियामेंट चाहींदी त सूबा ठही वेंदा। लंडन में साफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तरड़ चयो आहे त वज़ीर आज़म केतिरा ई भेरा अपोज़िशन खे ॻाल्हियुनि जी दावत ॾिनी आहे। आज़ाद कश्मीर में चूंडनि बाद हुकूमत ठही चुकी आहे, अवाम जा मसला बि हल थी रहिया आहिनि।

क़ौमी असेंबली जी कम्युनिकेशन कमेटी जो एनएचएस अखर जे जीएम सुल्तान अबरो के मुअतल करण जो हुक्म। सखर शिकारपुर रोड जो 22 किलोमीटर मरम्मती कम नाकिस करार। क़ौमी असेंबली जी कम्युनिकेशन कमेटी जो इजलास एजाज अखर की सदारत हेठ थियो। मुख़्तलिफ़ स्कीम जो जायज़ो वरतो वियो। कमेटी जी हिदायत एनएचए चेयरमैन सुल्तान अबरो के मुअतल कयो। एनएचए चेयरमैन इजलास के आगाही डींदे चयो त हैदराबाद खां कराची ताईं इक़दार मोटरवे M10 तामीर कयो वेंदो। सखर हैदराबाद मोटरवे जो कम भी अक्टूबर में शुरू थींदो। M10 ते 500 अरब रूपयनि जो मनसूबो आहे।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: पार्क मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई।
0: आप सुन रहे थे
3: सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी मेंबर सिंध के इम्कानी विरागे के मुकम्मल तौर रद्द कर छो। सूबे के टुकड़ा करण जा ख्वाब सिंधन के होश का गम वठण की सलाह। ईवान में मरसूम सिंधन रेसू जहा नारा सिंध खिलाफ गांधी कंदड़न के गद्दार करार दियण जो मुतालबो। सरदार खान चांडू चयो तो वफाकी वजीर हुजे सदस डाडो या हथा जा काबू खान लीडर सब बुधी छन त सिंध असांजी माउ आहे। सिंध जा शहर कंहिंजे बि जा न पर असांजा आहिनि। ऐवान में लसानी तकरीर कंदड़नि ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वञे। नादिर मक्सी चयो त बलोचिस्तान जहिड़ी सूरतहाल पैदा करण लाइ सिंध खे विराइण जी साज़िश थी रही आहे। को बि गैरतमंद सिंधी सिंध जो विरागो न चाहींदो। करोड़े सिंधियुनि खे मरण खां अॻु सिंध खे नथो विराए सघजे। मोहम्मद बख्श मेहर गुलाम कादर चांडियो साजिद चौकियो इमदाद प्रतापी मारे याश्ती ऐं शाजिया करीम चयो त पाकिस्तान जो बुनियाद सिंध ऐं सिंध जो बुनियाद पाकिस्तान आहे। इन्हीं खे हिक ॿिए खां धार नथो करे सघजे। सिंध असां लाइ माउ जीअं आहे, माउ खे टुकड़ा नाहे कयो वेंदो। धरती ख़ातिर बचो बचो क़ुर्बानी ॾियण लाइ तयार आहे। श्याम मेहताब डर सुहेल सियाल बुरहान खान चांडियो आसिफ मूसा आसिफ खान हिना दस्तगीर ऐं हीअ सोहू बहस में हिसो वठंदे चयो त सिंध खे अमर वञू था त उन जी वहदत ऐं सालमियत जो तहफ़ुज़ बि करियो। सिंध सां मोहबत ऐं वहदत जो तहफ़ुज़ सभिनी जी गॾियल ज़िमेवारी आहे। इंतज़ामी यूनिटनि जे नारे ते माण्हुनि खे बेवकूफ़ न बणायो। सिंध असेंबली में एमकेएम मेंबर्स आबादी के हिसाब से इंतजामी यूनिट्स के वक्त की जरूरत करार दई छो। कुरत लैन है इंतजामी यूनिट्स की गाल सिंध के विराण लाय न पई कई वे। इंतजामी मामलन में बेहतरी लाय इंतजामी यूनिट ठायण घुर्जन। जमाल अहमद चयो तो कराची के मसलन बाबत आवाज उठण से नाराज थियण बदरा जमीनी हकीकतन से गालण घुर्जे। कराची में रियासत खिलाफ गालू थी रही तो उन खिलाफ एफआईआर केर दाखिल कन्दो। फरहान अंसारी चयो तो सिंध में इंतजामी यूनिट्स बाबत उथंदड़ आवाजन के नजरअंदाज कर बदरा उन सबबन से बहस कर वे। सिंध से मोहब्बत या पाकिस्तानी हुजण जो कें सर्टिफिकेट दियण की जरूरत ना। जमात इस्लामी के मेंबर मोहम्मद फारूक चयो असांजी धरती है तो कराची भी असांजो शहर है। कराची से मोहब्बत कंदड़ कें वजात दियण जा पाबंद ना। सिंध असेंबली में टे ॾींहं बि नवनि सूबनि ऐं इंतज़ामी यूनिटनि ते बहस दौरान मेंबर्स जो गोड़। हिक ॿिए जी तकरीर

कैंपी मेंबर जा लफ्ज एतराज जुगा हुंदा त कार्रवाई मां हज़फ कया वेंदा। मेंबर एक पेज तकरीर सदर आसिफ ज़रदारी नवनि सूबनि जी बहस समेत मुख़्तलिफ़ क़ौमी मामलनि ते पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइम रहण जो पैगाम ॾींदे चयो त क़ौमी मफ़ाद ख़ातिर समूरनि दुनियनि

बाद हुकूमत ठही चुकी आहे, अवाम जा मसला भी हल थी रहा आहिनि। पाकिस्तान ऐं किर्गिस्तान जो बि तरफ़ी वापार जो काठो 20 करोड़ डॉलर ताईं वधाइण ते इतफ़ाक़। ट्रांज़िट ट्रेड, सिक्योरिटी, माहौलियात जे शोबनि में सहकार वधाइण ऐं जवाबदारनि जी हवालगी समेत मुख़्तलिफ़ माहिदनि ते सहियूं। लाहौर ऐं किर्गिस्तान जो शहर ओस जाड़ा शहर करार। वज़ीर आज़म सदर सां मुलाक़ात दौरान ॿिन्ही मुल्कनि विच में वापार जे कानून खे वधीक आसान बणाइण ते ज़ोर भरियो। वज़ीर आज़म चयो त किर्गिस्तान सां वापार वधाइण समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते इतफ़ाक़ थियो आहे। वज़ीर आज़म खे गार्ड ऑफ ऑनर बि पेश कयो वियो। वज़ीर आज़म किर्गिस्तान जो दौरो मुकमल करे वापसि ॾे पहुची वियो। किर्गिस्तान सदर वज़ीर आज़म खे एयरपोर्ट ते अलविदा कयो। अमरीकी फ़ौज जा ईरान जे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते हमला। पासा एयरो स्पेस जे 7 अहलकारनि समेत 19 ॼणा शहीद। 74 खां वधीक ज़ख़्मी थियण जी तस्दीक। ईरानी इलाइक़नि अहवास, चाबहार, कशम, बंदर अब्बास ऐं ॿियनि हंधनि ते हमला कया विया। अमरीकी फ़ौज सेरिक जे हिक ॻोठ में शादी तकरीब खे बि निशानो बणायो। अमरीकी सिनकाम मूजिब ईरान ते हमला दिफ़ाई नोई जा हुआ। हमलनि जे जवाब में ईरान जो अरब मुल्कनि में मौजूद अमरीकी अॾनि ते वार। कुवैत, बहरेन, उर्दन ऐं ईरान में इराक में मौजूद अमरीकी अॾनि ते हमिलो। अमरीकी हेलीकॉप्टर ऐं ड्रोन्स तबाह करण जी दावा। बासर इनकलाब चयो आहे त उर्दन जे कैम्प तेतनि ते हमले में केतिराई अमरीकी फ़ौजी मारिजी थी विया आहिनि। उर्दन में अमरीकी बेस ते हमले में अमरीकी ड्रोन्स खे तबाह कयो वियो आहे। बहरेन में बि अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो आहे। उर्दन पारां ईरान जे फायर कयल 13 बैलिस्टिक मिसाइल्स मां 10 तबाह करजी रहिया हुआ। पाकिस्तान, अमरीका, ईरान विच में हाणोकी चिकताण ते गणती ज़ाहिर करे छॾी। पदई तर्जुमान ताहिर हुसैन इंद्राबी चयो आहे त ख़िते में अमन ऐं इस्तेहकाम जो वाहिद रस्तो ॻाल्हियूं ई आहिनि। पाकिस्तान, अमरीका ऐं ईरान में चिकताण जे ख़ात्मे लाइ कोशिशूं जारी रखंदो। उमीद आहे त मसइले जो हल ॻाल्हियुनि ज़रिए निकरंदो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: सिस्टम नकारा थी चुको बजे सिस्टम नकारा थी चुको तू न सिस्टम में
4: काबू खान लीडर हुए सिंधु असर असो शाह ईमान
3: जे हिसाब असो जमायत इस्लामी साहब चे तो कहीं पी की जागीर कान पर ना पी की जागीर असे डाडे होते वेठा तू कल आयो आई चार असो
5: सरदार खान साहब आराम कंजो नालो न खड़ो प्लीज।
6: सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी में

0: क्रीम, हर्ष ग्लो और गोरी रंगत, अर्जुन ब्यूटी क्रीम।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत पाए बेशुमार कीमती इनाम। अब दूध पीने का नहीं खाने का। स्वीट
2: खीर न पर असां जो आहे नादिर बख्शी चयो त बलोचिस्तान में ॾिसो कहिड़ी सूरत हाल आहे, छा साॻी सूरत हाल सिंध में पैदा करणु चाहियो था? को बि ग़ैरतमंद सिंधी सिंध जो विरागो न क़बूल कंदो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए एफएम नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जे बिनी पासन का नेकाले जूं गटर लाइन बंद होजण सबब गंदो पानी रोड आए भरपासे वारन इलाकन में जमा थी वयो आहे, जे करे न रुगो आमद रफ्त मुतासिर थी रही आहे पर बदबू आए गंदगी सबब

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल।

चंड ते महफिल सजायो दिल जी गाल करनी आ, चंड ते महफिल सजायो दिल जी गाल करनी आ, रही न दूर तड़पायो दिल जी गाल करनी आ, रही दुनिया में नाही सा मोहब्बत ऐ सचाई, लबन ते मुर्का विखरिल दिलन में आबे आई, चाहत जा चंग वजायो दिल जी गाल करनी आ, चंड ते महफिल सजायो दिल जी गाल करनी आ। कराची का कश्मीर किंजर का करूं जर ताई सुनी सिंधवासन के आबिद चौहान जो सिक भरियो सलाम कबूल पऊं।

प्रोग्राम जे पैटर्न मुताबिक अवां खे मुतालिक बुधाईंदो हलां त प्रोग्राम में शामिल हूंदी आहे शायरी, अवां जे दिल जूं ॻाल्हियूं, अवां सां कचहरी ऐं उन सां गॾोगॾु हिकिड़ो को बि असांजो हूंदो आहे उन ॾींहं मुतालिक टॉपिक। कल्ह को असां जेको टॉपिक हो उन ते ॻाल्हि ॿोल काफ़ी दोस्तनि सुठी कई त शायरीअ जो कहिड़ो किरदारु आहे असांजे मुआशिरे में। अॼु जेको असां रखूं था टॉपिक उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। टॉपिक ॿुधाइण खां अॻु में अव्हांखे मां पंहिंजो कॉलिंग नंबर ॿुधाईंदो हलां। असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03000113488। इन ते कॉल करे अव्हां असां सां करे सघो था पंहिंजे दिल जी ॻाल्हि शायरी वसीले, गीतनि जी झुंगार वसीले या प्यार जे कंहिं पैगाम वसीले।

कलोके प्रोग्राम में जिक्र कयो त अगे जॾहिं रेडियो टीवी अख़बार जो दौर न हुयो त वॾनि जूं महफ़िलूं कचहरियूं ॻोठ जे चौक ते थींदियूं ऐं ॻोठ बि उन में जेको जंक्शन हूंदो हुयो ॻोठ जंहिं जा भर पासे सां ॿ टे ॻोठ लॻंदा हुया विच में को ॻोठ हूंदो उते अची करे सभु गॾु थींदा चांहि जी सिप ते कप ते प्यार भरियूं मोहबतूं कचहरियूं ऐं ख़बर बि असांजी स्प्रेड ईअं थींदी हुई हिक ॿिए खां ॿुधल ॻाल्हि उहा पंहिंजे ॻोठ ताईं वेंदी जेके वॾड़ा सॼे ॾींहुं पंहिंजे कमकार खां आज़ाद थी करे या जेके वॾड़ा हुया कमकार न कंदा त उहे गैदरिंग पंहिंजे फ्रेंड सां वेही करे मच कचहरियूं बि हूंदियूं ऐं उहे कचहरियूं जेको आहे ॻोठ जे चौक ते कंदा उन में जेकॾहिं ख़बरूं जेके हूंदियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं उहे ॿुधी करे हिक ॿिए खां जॾहिं वापसि उहे घर ॾांहुं वेंदा हुया शाम जो त उहे पंहिंजनि बचनि ॿारनि सां उहे हाल अहिवाल ॾींदा अहिड़े तरीक़े सां उहो दौर हुयो त ख़बर जेको आहे त अहिड़े तरीक़े सां ॿुधी उन खां बाद में जॾहिं रेडियो दौरु आयो त पोइ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई प्रिंट मीडिया आई अख़बार आई रेडियो आयो उन खां पोइ जेको आहे त ख़बरुनि जो सिलसिलो कुझु ॿियो थियो पर असां अॼु बि उन वॾड़नि जी उन महफ़िलनि खे मिस कंदा आहियूं ॻोठनि में त शायदि अॼु बि रवायतूं बरक़रार आहिनि पर तंहिं हूंदे बि जेको आहे त काफ़ी बदिलाउ अची चुको आहे सो असां चाहियूं था त इहे पंहिंजूं सकाफ़तूं पंहिंजा कल्चर पंहिंजा रंग उहे पंहिंजी नसलनि में मुंतक़िल कंदा हलूं अॼु दौर डिजिटल आहे उन डिजिटल दौर जा जिते फ़ाइदा आहिनि उते उन्हनि जा नेगेटिव इम्पैक्ट पिणु आहिनि अॼोकी दिलि जी ॻाल्हि प्रोग्राम में असां सारूणियूं सारींदासीं पुराणियूं त वॾड़ा जॾहिं वेहंदा हुआ मच कचहरी ते त उते किसा ॻाल्हियूं कहाणियूं कहिड़ियूं हूंदियूं उते गुज़ारतूं हूंदियूं उते चवणियूं हूंदियूं मुहावरा हूंदा अॼु असां ॻाल्हि कंदासीं चवणी ऐं मुहावरे ते जंहिं दोस्त खे जेको बि ऐं प्रोग्राम जेकॾहिं सभई दोस्त गॾिजी करे ॿुधी रहिया आहियो डेफिनेटली त पोइ जेका शामिल थी वञे चवणी या मुहावरो उन ते ॻाल्हि न कंदासीं हर दोस्त हिकु नई चवणी हिकु नओं मुहावरो असांखे ॿुधाईंदो ऐं उन जो मफ़हूम पिण ॿुधाईंदो जहिड़े तरीक़े सां हिकड़ी चवणीअ खां आउं शुरूआत थो कयां उन खां बाद में अव्हां जे इंतज़ारु रहंदो उन्हनि चवणनि जो ॻाल्हियुनि जो मां हिकड़ी सिंपल नंढड़ी चवणी जेका असांजे किताबनि में पिणु मिले थी पई त जहिड़ी करणी तहिड़ी भरणी जहिड़ी नियत तहिड़ी मुराद इन ॿिन्हिनि खे अलॻि अलॻि बि सम्झो वञे सघिजे थो ऐं इन्हनि ॿिन्हिनि जो कॉम्बिनेशन हिकिड़ो बि लॻे थो त इहो ॿिन्हिनि जो हिकिड़ो ई मेलाप आहे त जहिड़ी करणी तहिड़ी भरणी ऐं जहिड़ी नियत तहिड़ी मुराद मतिलब जहिड़ो कंदो अहिड़ो ई बदिले में रिटर्न मिलंदो ऐं नियत तव्हांजी जहिड़ी हूंदी ओहिड़ी मुराद हासिल थींदी

पोइ असां पंहिंजो कॉलिंग नंबर वंस अगेन रिपीट कंदासीं, अव्हां जी कॉल जो वेट कंदासीं, असां सां कचहरी कंदो ऐं प्रोग्राम में म्यूज़िक बि शामिल कंदासीं ऐं प्रोग्राम में शायरी बि शामिल कंदासीं। असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03000111348।

ਗੱਦ ਸਦਾਈ ਗਮ ਹਲੇ ਥੋ ਕਮ ਹਲੇ ਥੋ ਗੱਦ ਸਦਾਈ ਗਮ ਹਲੇ ਥੋ ਕਮ ਹਲੇ ਥੋ ਬਾਕੀ ਸਭ ਲਮਸਮ ਹਲੇ ਥੋ ਕਮ ਹਲੇ ਥੋ ਗੱਦ ਸਦਾਈ ਗਮ ਹਲੇ ਥੋ ਕਮ ਹਲੇ ਥੋ ਬਾਕੀ ਸਭ ਲਮਸਮ ਹਲੇ ਥੋ ਕਮ ਹਲੇ ਥੋ ज़िलज़िला मुझे अंदर जा इंदा रहन था ज़िलज़िला मुझे अंदर जा इंदा रहन था गुफ्तो पर मदहम हले थो कम हले घाव तुझो गहरो आहे जल्दी वन तू घाव तुझो गहरो आहे जल्दी वन तू मैं कदे मरहम हले थो कम हले घाव तुझो गहरो आहे जल्दी वन तू घाव तुझो गहरो आहे जल्दी वन तू मैं कदे मरहम हले थो कम हले थो सच पुछी जे ही भी हिकड़ी बेहसी आ सच पुछी जे ही बेहकड़ी बेहसी या बेहसी में दम हले थो कम हले शायरी भी किरत आ का काढ़ जी जन शायरी भी किरत आ जन शायरी भी किरत आ का काढ़ जी जन जी जो जो कम हले थो कम हले थो सिंध साजे सब सचा आयू तपो छो सिंध साजे सब सचा आयू तपो छो हित रुगो मातम हले थो कम हले।

जो ज्ञान में गौतम हले थो कम हले थो। गर सदाई गम हले थो कम हले थो, बाकी सब लमसम हले थो कम हले थो।

0: दोस्तों मिलंदासीं हिकड़ी शॉर्ट ब्रेक खां पोइ खोड़ सारियूं थींदियूं अवां जूं अवां सां दिलि जूं ॻाल्हियूं ॿुधंदा रहो जी एफ एम नेटवर्क।
1: तहज़ीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM 88 की आवाज।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। तमाम भी पैंजू ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए ते ठाण चाहियो था जिते हुजे तहफ़ुस जदीद सहूलियतूं ऐं मंजूर थियल सिक्योरिटी।
3: तपोई भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
1: सखर शिकारपुर रोड ते
3: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जी बिल्कुल साम्हूं
1: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां मंजूर थियल
3: एक शानदार ऐं काबिले एतमाद रिहायशी मनसूबो।
1: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर,
3: रिहायशी प्लॉट 80, 120, 150 ऐं 200 गज जा,
1: ऐं कारोबारी मौके कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज ऐं 600 गज।
3: हिते तव्हां खे मिलनि थियूं जदीद सहूलियतूं,
1: साफ़ मिठो पाणी,
3: बिजली, गैस,
1: 24 कलाक सिक्योरिटी,
3: मस्जिद, पार्क, स्कूल, बाउंड्री वॉल ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि, ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेझो आहे
1: जेको रिहाइश ऐं सीड़पकारी ॿिन्ही लाइ बहितरीन मौको बणाए थो।
3: अॼु ई पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो,
1: फौरी कब्ज़ो ऐं फौरी रजिस्ट्री।
3: कॉन्टेक्ट
1: 03009317252
3: एंड 03132757860। हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर,
1: तव्हां जे महफ़ूज़ मुस्तक़बिल ऐं बहितरीन इन्वेस्टमेंट जो बहितरीन।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: वरी महिरबानी लखरा कल खां ई शुरू कयो प्यारा अवां कल ई असां सां शामिल आहियो
1: हा जी जी कल असां कोशिशि कईसीं तव्हांजो नंबर न लॻो असांजो प्रोग्राम खामोश थी वियो ॿुधो पिया प्रोग्राम हुजे त ॻाल्हि हणी थी पर नंबर न लॻो
0: न न अॼु लॻी वियो अव्हांजो नंबर
1: अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला अॼु माना शुरू खां ई माना मुंहिंजी कॉल लॻी आहे मां ईअं पियो सम्झां
0: बिल्कुल असां कॉल अटेंड कोन करे सघियासीं अॻ में कॉलिंग हलंदी रही कुझु ब्रेक बि हुयो अॼोको अवां असांजो जेकॾहिं प्रोग्राम ॿुधी रहिया आहियो त टॉपिक ॿुधो हूंदो मां त पोइ अॼोके टॉपिक जे हवाले सां को चवणी को मुहावरो का गुजारत कुझु को असां सां ॿोल ॿोलियो हा बुरड़े कई ॿारनि सां बिल्कुलु तव्हां इहा हिकिड़ी मुहावरो आहे वज़ाहत लाज़मी आहे वज़ाहत लाज़मी आहे
1: जी जी हा पोइ तव्हां पंज वॾनि खे ॿुधो त उहो पूरो छा कंदो हूंदो माना पाड़े जूं मायूं जेके बि कम थी वेंदियूं गुरड़े खे चवंदियूं वॾा मुंहिंजो ॿारड़ो खेॾाए जाए मां मोटीअ ते कम कार न
0: जी सर
1: ॿुधो न साईं
0: जी साईं
1: पोइ उन ॿारड़े खे जेकॾहिं उहो वरी छा कंदो हो गुरड़ो त वरी गुंडीअ में विझी छॾींदो हो
0: जी
1: असां पंहिंजो कमु कार लाइ मां वापसि मोटी आया आहियूं हाणे असां पंहिंजा ॿार ॾाढी असीं पंहिंजा ॿार पाण सुञाण जो तव्हां मूंखे ॾेई वियो मां तव्हांजा ॿार अमानत जेका आहे हिफ़ाज़त रखी आहे
0: अच्छा ठीकु आहे
1: अबा उहो बुंगड़े छा करे कीअं जो गुंडे जो ढकु लाइ सभई ॿार लाइ मरी विया आहिनि उहे ॿार सदंग ईंदो वञे सभु जेको मायूं खिची वेंदा असां लाचार असांखे इहो अथव तूं खेॾाईंदे रांदि खेॾाईंदे हुननि जी हिफ़ाज़त कंदे हे त तो असांजा ॿार सॼा मारे छॾिया आहिनि मां त खेॾायां पियो खेॾाए खेॾाए मां मूंसां पसी कोन था कनि मां वठंदो गुंडीअ में
0: अच्छा
1: उन ॾींहंनि खां वठी पाको या चवणी सॼी थोरा ईअं कंदो साईं जीअं बुरे कई ॿारनि सां
0: मां पंहिंजे पर में पंहिंजे हिसाब सां सुठी वज़ाहत करण जी कोशिश कई आहे पर मूं वटि इन जो कुझु ॿियो आहे ख़ाको उहो मां हींअर अव्हां सां कोन जेको आहे त शेयर कंदुमि अव्हां प्रोग्राम ॿुधंदा रहो ऐं उन खां पोइ जेको आहे त असां सभिनी जी राय वठी करे इन ते बि ॻाल्हि ॿोल उहे करे सघनि था दोस्त ऐं पंहिंजी ॿी का जेको आहे त उहा चवणी पिण असां सां शामिल करे सघनि था प्रोग्राम में ॿियो को सलाम को दुआ को पैगाम को प्यार जा को दोस्तनि सां
1: अनवर सोलंगी आहे मोहम्मद इकबाल फलपोटो आहे
0: जी
1: अली मोहम्मद बंबरो आहे अली खान सुहाग आहे ऐं जिते किथे मुंहिंजो आवाज़ वञे थो सभिनी भाउरनि भेण मूंखे हाफ़ करणी पियो राति जे थधे पार में सलाम
0: साईं मुंहिंजे तरफ़ां बि तव्हांजी सॼी संगत खे सलाम वॾी महिरबानी प्यारा लव यू लख लाइ कुर्ब पंहिंजो ख़्यालु रखंदा
1: थैंक यू
0: थैंक यू वॾी महिरबानी

0: असां सां गॾु बि कॉलर आहे, कॉल अटेंड कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां?
1: वालेकुम सलाम, प्यारा भाउ जावेद साईं, कहिड़ा हाल अथई?
0: जावेद, अवां पंहिंजो नालो ॿुधायो, मुंहिंजो नालो पिया खणो।
1: लारिकाणे खां आसिफ अली शाकर, अवां सुठो प्रोग्राम, बहितरीन प्रोग्राम खणी आयो, यकीन कयो त।
0: वॾी महिरबानी, लव यू लख लाइक कुर्ब प्यारा।
1: बहितरीन शायरी, बहितरीन प्रोग्राम, मां सम्झा थो अहिड़ो को सत्य न हूंदो।
0: बाबर शेख पाण महबूब माण्हू आहे, सो इन करे उन्हनि असांखे मौको ॾिनो। वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी।
1: बाबर शेख साहब खे गुज़ारिश आहे त लारकाण में हिकिड़ो घंटो प्रोग्राम हले थो, 10 बजे बंदि कयो थो वञे मुंहिंजा सोणा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इहा नोट थी वई बाबर भाई ताईं। मां अॼु असांजे इन प्रोग्राम जे टॉपिक मुतालिक़ कुझु चवणु चाहींदो। प्यारा, अॼु जो जेको अनुमान आहे न, त सिंधियूं पुराणियूं जेके चवणियूं ऐं पहाका आहिनि, त असांखे पहाको या का चवणी ॿुधायो। हलो ठीकु आहे, यादि न आहे त थोरी देरि अॻु जंहिं दोस्त जेको आहे ज़िक्र कयो, जेका ॿुढड़े कई ॿारनि सां, छा हुन सां गॾु बसि सहमत आहियो या इहा न आहे हुन जी वज़ाहत? मुख़्तलिफ़ मिले थी, को पैगाम, को प्यार जो, को दोस्तनि जे नाम, कुझु को
1: इहा
0: शामिल थी वई अव्हांजी सजेशन। बिल्कुल, असां शामिल करे छॾूं था उहो पंहिंजी प्ले लिस्ट में। वरी महिरबानी, लव यू लख लाइक प्रोग्राम ॿुधंदा रहो। थैंक यू पहिरां।

0: दोस्तो अवां सां दिल जी ॻाल्हि हलंदी रहंदी ऐं ख़ूबसूरत कॉलर्स असां सां शामिल थींदा रहंदा, कॉलिंग बि अचनि पियूं शामिल कंदासीं, पर अॼोके प्रोग्राम में हिन महिल ताईं असां ट्रेक प्लेन कयो आहे। सो अवां सभिनी महबूबनि जे नाम मंजू सखराणी जी ख़ूबसूरत आवाज़ में प्यारो गीत बुॾे नेण न कण।
1: इस्लामाबाद

आऊं तोसाण तू किथे जाना, आऊं तोसाण तू किथे जाना, हिन घड़ी हाण तू किथे जाना। जिंदगी जलजले में फटके पई, जिंदगी जलजले में फटके पई, केडी छिकताण तू किथे जाना, आऊं तोसाण तू किथे जाना। जिंदगी वाण तू किथे जाना, आऊं तोसाण तू किथे जाना। आऊं तो मंझ मोह पयो आहियां, आऊं तो मंझ मोह पयो आहियां, पाण तू किथे जाना, आऊं तो साण तू किथे जाना। चप मुंहिंजा न सुकन पया सागर ते, चप मुंहिंजा न सुकन पया सागर ते, अख आलाण तू किथे जाना। कहिड़ी कुंड कायनात जी वनी वरतई, कहिड़ी कुंड कायनात जी वनी वरतई, पाण खे आण तू किथे जाना। कहिं घड़ी मंझ तू घुमे पई, कहिं घड़ी मंझ तू घुमे पई, को सफर साण तू किथे जाना,

आऊं रण में रड़ी सड़ी वेंदुसि, आऊं रण में रड़ी सड़ी वेंदुसि, मां थियसि पाण तूं किथे जाना। मुझे सीने में तुझे सहके जो, मुझे सीने में तुझे सहके जो, आ लगल बाण तू किथे जाना। जिस्म तुझे जी गूंज दड़ गर्मी, जिस्म तुझे जी गूंज दड़ गर्मी, केडी गोसाण तू किथे जाना। आऊं तो साण तू किथे जाना, हिन घड़ी हाण तू।

0: प्रोग्राम में वेलकम बलिगार कॉल अटेंड कंदा से हिकड़ी अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथा का
1: वालेकुम सलाम आता
0: केर पेरा किथा का
1: मिठा मानो कुर्बानी लिखास्ती के बुलाया वो था कि गुलाम कास्ती नहीं लगी झंडो मरी
0: है वेलकम बलिगार प्रोग्राम में प्यारा प्रोग्राम क्या बोलोगे दिलबर बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: प्रोग्राम बुधी रहा हूँ
1: बिल्कुल
0: प्रोग्राम जो टॉपिक अमा बुधो उनवान बुधो प्रोग्राम जो
1: जीरा
0: अज सारूनी सारूनी पया पांजन वडन जी
1: सारूनी
0: ए पहाका जे केन त वे असा चउ पया एक अद दोस्त शामिल कयो अमा को पहाको को चमणी शामिल करण चाहिदो
1: आ पहाको आए पहाका गोठा
0: जी छा थोड़ी वजाहत करना चाहिए तो
1: सही
0: लाजवाब लाजवाब को पैगाम को देना चाहिए को दोस्तों के नाम करना चाहिए
1: हाँ पैगाम है तो मोहब्बत हो रहा है मोहब्बत
0: जी जी जी जी
1: अल्लाह दिलो खास के लिए आवाज आए
0: जी जी जी जी शामिल करने की कोशिश कंदा से पहरा
1: बुधाए तक बोला
0: जी जी बुधाए छो झुंगारी जी बुधायो पे झुंगारी बुधायो
1: बिल्कुल
0: वरी मेहरबानी प्यारा प्रोग्राम में शामिल थे कुर्ब लख लाइक

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई
3: और तो आसमान से उतरे हैं क्या आराम बैठो
4: साई सरदार साहब सरदार खान साहब प्लीज
3: सरदार खान जी सिद्ध लगा उन्होंने छठे देखो आसमान हो नहीं आया
4: सरदार खान साहब आराम से
3: केंद्र
4: नालो न खड़ो प्लीज नालो न खड़ो।

0: आप मैं कर रहा हूँ
1: बोलेगा हम बोलेंगे, हम किसी से नहीं डरते। जाओ मर्जी है जो करना है कर लो।
2: इन्हन छा कयो आहे बलूचिस्तान सां और फ्रंटियर सां छा पियो थियो। हाणे इहो ई प्रॉब्लम सिंध में था। हाणे 5-6 करोड़ माण्हू रहे थो हिते। मां सभिनि खे पहिरियों मारियो, पोइ डिवाइड कयो। सिंध डिवाइड नथी थी सघे।
3: सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी मेंबर सिंध इम्कानी विरागे के मुकम्मल तौर रद्द करे छो। सूबे के टुकड़ा करण जा ख्वाब डिसंदड़न के होश का कम वठण की सलाह। ऐवान में मरसू मरसू सिंध डेसू जा नारा। सिंध के विरागी और लसानियत जो गालू कंदड़न खिलाफ केस दाखिल करण जो भी मुतालबो। सरदार खान चांडियो चयो तो वफाकी वजीर हुए सदस डाडो या हथां जागर पी डाडे बलोचिस्तान में सागी पैदा कर चाहो था। को भी गैरतमंद सिंधी सिंध जो विरागो न कबूल कंदो। करोड़े सिंधियन के मरण का

0: उहो माण्हू उतां उथी अचे चए थो त हे सिस्टम नाकारा थी चुको आहे। भले सिस्टम नाकार हुन सिस्टम में हिन मलबा ॾियण थो हुजे। असां लीडर पाण खे
1: सम्झे थो बंदि थी वञे।
0: असां राबे ॾाढे हिते वेठा आहियूं, तूं कल आयो आहीं
2: और इंशाला ताला क़यामत के दिन तक रहेगा इंशाला। सिंध जी धरती
0: आराम बैठो।
3: साईं सरदार साहब, सरदार खान साहब, प्लीज
4: इंतज़ामी यूनिट्स खे वक़्त जी ज़रूरत करार ॾेई छॾियो। प्रतुलन चयो आहे त इंतज़ामी यूनिट्स जी ॻाल्हि
3: कंहिंजो नालो न खणो प्लीज। नालो
4: कराची जे मसलनि बाबति आवाज़ उथण ते नाराज़ थियण बदिरां ज़मीनी हक़ीक़तनि ते ॻाल्हाइण घुर्जे। कराची में रियासत ख़िलाफ़ ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि। FIR सिंध में इंतज़ामी यूनिट्स बाबति उथंदड़ आवाज़नि खे नज़रअंदाज़ करण बदिरां उन्हनि जे सबबनि ते बहस कयो वञे। सिंध सां मोहबत या पाकिस्तानी हुजण जो कंहिंखे सर्टिफिकेट ॾियण जी ज़रूरत नाहे। जमायत इस्लामी जे मेंबर मोहम्मद फारूक चयो त सिंध असांजी धरती आहे त कराची बि असांजो शहर आहे। कराची सां मोहबत कंदड़ कंहिंखे वज़ाहत ॾियण जा पाबंद न आहिनि।

पाकिस्तान ऐं किर्गिस्तान जो बि तरफ़ी वापार जो काथो वीहंदो आहे। नादिर मुख़्शी चयो त बलोचिस्तान में ॾिसो कहिड़ी सूरतयाल आहे, छा साॻी सूरतयाल सिंध में पैदा करण ऐं जवाबदारनि जी हवालगी समेत मुख़्तलिफ़ माइदनि ते सहियूं। लाहौर ऐं किर्गिस्तान जो शहर ओस जाड़ा शहर करार। वज़ीर-ए-आज़म किर्गिस्तान सदर सां मुलाक़ात दौरान ॿिन्ही मुल्कनि विच में वापार जे कानून खे वधीक आसान बणाइण ते ज़ोर भरियो। वज़ीर-ए-आज़म चयो त किर्गिस्तान सां वापार वधाइण समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते इतफ़ाक़ थियो आहे। बिश्केक में वज़ीर-ए-आज़म खे गार्ड ऑफ ऑनर बि पेश कयो वियो। वज़ीर-ए-आज़म किर्गिस्तान जो दौरो मुकमल करे वापसि ॾे पहुची वियो। किर्गिस सदर वज़ीर-ए-आज़म खे एयरपोर्ट ते अलविदा कयो।

चिंतास माहिदे बाबत चालीसी अदालत जो फैसलो वाजह आए, एक तरफी कदम सा मामलो खत्म न तो थी सके। भारत के सिफारती माह समेत हर अंध शर्मिंदगी के मुंह देणो पयो। दिफा वारे वजीर ख्वाजा आसिफ चयो आहे त चिंतास माहिदे में कामा ए फुल स्टाफ समेत का भी तब्दीली बिन धुरियन जे रास्ते सां थी सके थी। वफाकी काबीना इस्लामाबाद में मकानी हुकूमतन जे निज़ाम जी मंजूरी ॾेई छॾी। ज़रियन मूजिब इस्लामाबाद मकानी हुकूमतन बाबति बिल घरू मामलनि वारी स्टैंडिंग कमेटी में मंज़ूरी लाइ पेश थींदो। इस्लामाबाद मकानी हुकूमतन जो निज़ाम टिन तकनि ते ॿधल हूंदो। काउंसिल मेंबरनि में जनरल काउंसलर, औरतुनि ऐं अक़लियतनि जी नुमाइंदगी शामिल हूंदी। कमेटी मां मंज़ूरी खां पोइ बिल सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली में मंज़ूरी लाइ पेश कयो वेंदो। जीएस सिंध रेबर कमेटी सिंध जे इम्कानी विरागे ऐं सिंध दुश्मन मंस

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।